0: Energy, powering Texas businesses for over two decades. Call 844-428-2808 or visit taraenergy.com today. Tara Commercial Energy, jo aapke business ko roshan rakhe.
1: Dallas has its own superheroes, fighting dust, clogs, blocked vents, and hidden fire hazards every day. And now, the superheroes of ducts are turning one. Duct Time celebrates its first anniversary in Dallas. For Duct Time services, call Jeetu Patel at 972-877-2500 and book your appointment today for a cleaner, safer, and fresher home.
2: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
3: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
4: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
5: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
6: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
5: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
7: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
8: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
9: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
10: तुमसे मिलके दिल का है।
8: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
9: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
11: वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट रेडियो स्टेशन पे, जो है 104.9 FM फन एशिया रेडियो। और मैं हूँ आरजे केतकी, आई एम फिलिंग फॉर अपूर्वा। उनका शो होता है हर संडे 6 to 8। टुडे शी इज नॉट हियर, सो आई एम हियर बिकॉज एंटरटेनमेंट रुकनी नहीं चाहिए, राइट? सो जो लिसनर्स हमें अभी अभी जुड़े हैं उनको बताते जाऊ दैट दिस सेगमेंट इज अबाउट फूड। यस, लाइक गाने का जायका, यू कैन कॉल इट आउट। इट इज कंसिस्ट लाइक इट कंसिस्ट ऑफ फन, फूड एंड फुल ऑफ एंटरटेनमेंट। हम बात कर रहे हैं ऐसे गानों की जिनके लिरिक्स में आप देख सकते हैं या फिर ढूंढ सकते हैं अलग अलग फूड आइटम्स। यस, सो वैसे आपने एक बात नोटिस की है, फूड और म्यूजिक का कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट है। देखिए, रोड ट्रिप प्लस म्यूजिक प्लस स्नैक्स, रेन प्लस पकोड़ा प्लस म्यूजिक, संडे मॉर्निंग प्लस चाय प्लस म्यूजिक, और एग्जाम के टाइम म्यूजिक प्लस स्नैक्स प्लस थोड़ा सा गिल्ट। चलिए, नेक्स्ट म्यूजिकल सर्विंग के लिए आप रेडी है? तो नेकी और पूछ, चलिए सुनते हैं नेक्स्ट गाना जिसमें है बहुत सारा प्रोटीन छुपा हुआ। यस, क्योंकि मुझे पता है आज संडे है, आज सभी ने छुट्टी ली होगी जिम को, लेकिन फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, मंडे ऑनवर्ड्स सबका रूटीन शुरू हो जाएगा, और जहाँ पे फिर बात होती है प्रोटीन, फाइबर एंड व्हाट नॉट। तो सुनिए नेक्स्ट गाना जिसमें इमेजिनरी ही सही लेकिन अपना प्रोटीन इनटेक आज के लिए फिल कर दीजिए।

That was अंडे का फंडा. I hope you all got कि क्या है फंडा अंडे का, right? We all love अंडा. और जो अंडा लव नहीं करते हैं, वो आर वेजिटेरियंस. आई हैव अनदर ऑप्शन फॉर यू, बट वहाँ जाने से पहले, वो म्यूजिकल सर्विंग पेश करने से पहले, मैं आपको एक इवेंट के बारे में बताना चाहती हूँ. सो टुडे इज 20th September, बट 26th September को क्या है पता है? सोनू निगम जी आ रहे हैं डालस में. यस, सोनू निगम रिवोल्यूशन, द वन एंड ओनली सोनू निगम लाइव इन कॉन्सर्ट एक्सपीरियंस रिवोल्यूशन सैटरडे सितंबर 26th एट 8:30 PM एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर इन एलन. योर फेवरेट सॉन्ग्स, दैट आइकॉनिक वॉइस, ऑल लाइव. तो देरी मत कीजिए, टिकट्स आर अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल 855-360-SHOWS. रिवोल्यूशन सोनू निगम लाइव. अगर आपको उनको लाइव सुनने की आशा है तो अभी भी टिकट्स अवेलेबल है, गो एंड ग्रैब इट. चलिए हमारे म्यूजिकल जायके या फिर गानों के जायके के तरफ बढ़ते हैं और सुनते हैं एक गाना जिसमें है जलेबी एंड फाफड़ा. टू ऑल द वेज लवर्स, हियर कम्स द नेक्स्ट सॉन्ग फॉर यू.

दैट वॉज सॉन्ग फीचरिंग सलमान खान. तो उसमें तो हमने सुन लिया मठरी, फिर ढोकला, उसके बारे में. अब एक क्विक पर्सनालिटी टेस्ट किया जाए. आपका फेवरेट स्नैक आपके बारे में क्या कहता है वो देखते हैं, ठीक है. टू ऑल पिज्ज़ा लवर्स, यू प्रोबेबली बिलीव चीज मेक्स एवरीथिंग बेटर. इफ देर आर फ्यू समोसा लवर्स, आई गेस नॉट फ्यू, मेनी समोसा लवर्स, तो आपका फंडा क्या है लाइफ का? मुझे लगता है आप बहुत प्रैक्टिकल हो. यस, ट्रायंगल में भी आप हैप्पीनेस ढूंढ लेते हो. अगर कोई पॉपकॉर्न लवर है तो आपको मूवी से ज्यादा स्नैक्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. ये मेरा वर्डिक्ट है, इज इट राइट? चॉकलेट लवर्स को आपकी फिलॉसफी क्या बताऊं? आपकी ऐसी है कि शेयर करेंगे, मे बी. एंड आइसक्रीम लवर्स, आप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डेजर्ट में देखते हैं, राइट? आप सुन रहे हैं फनेशिया रेडियो 104.9 FM, और मैं हूं आरजे केतकी, और आज मैं ले चली हूं आपको म्यूजिकल जर्नी विच इंक्लूड्स फूड. सो ऑल आर इमेजिनरी कैलोरीज, डोंट ब्लेम मी. नेक्स्ट सॉन्ग इज एक स्नैक आइटम है विच इज फेमस इन महाराष्ट्र. लेट्स हियर दैट.

That was Kaande Po Hai. It is from the film Kaande Po Hai, sung by Sunidhi Chauhan. Actually, Kaande Po Hai ka relation aisa hai ki jabhi bhi koi ladka ladki ko dekhne aata hai, to at least Maharashtra mein first dish jo serve ki jati hai wo hoti hai Kaande Po Hai with chai. So yeah, that is about Kaande Po Hai. And food ka kaise rehta hai na, फूड का कनेक्शन सिर्फ टेस्ट से नहीं होता, फूड मेमोरीज क्रिएट करता है. किसी को नानी के घर का पराठा याद आता है, किसी को स्कूल के बाहर वाला समोसा, किसी को संडे की बिरयानी, किसी को दिवाली की मिठाई, किसी को मॉम के हाथ की चाय, और कभी कभी एक पर्टिकुलर स्मेल भी हमें ईयर्स बैक ले जाता है. So that is the magic of food, right? So you are listening to Gaane Ka Zaika, jahan pe chal rahi hai baatein food, fun and lots of entertainment ki. I hope aapki journey ekdam delicious ho rahi hai. Ye musical journey aapko pasand aa rahi hai, jahan pe hum dekh rahe hai aise gaane, hum dhoond rahe hai aise gaane jisme chupe hue hai alag alag food items. To pesh karti hu next gaana jo hai दावते इश्क, from Funasia family to all our listeners and our well-wishers. Here comes the next song from the movie दावते इश्क.

तो वो थी दावते इश्क फ्रॉम फनेशिया टू ऑल द ब्राइट एंड स्मार्ट लिसनर्स आउट देयर जो मुझे फोन कर करके बोल रहे हैं कि हाउ मच दे आर एंजॉयिंग दिस सेगमेंट. एक्चुअली मैंने कोई भी आपकी कैलोरीज बिना बढ़ाए आपके सारे सारे टेस्ट बर्ड्स को क्या बोलते हैं एकदम सेटिस्फाई कर दिया है. और अब टाइम है थोड़ा पानी पी लेने का. सो लेट्स हियर दिस नेक्स्ट सॉन्ग.

That was Pani Da Rang, sung by Ayushmann Khurana and from the movie Vicky Donor. स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट रेडियो स्टेशन पे जो है फन एशिया रेडियो 104.9 FM. और अब बारी आ गई है गिव अवे की. सो हैव योर फोन्स रेडी और मैं आपको एक सवाल पूछूंगी, लेकिन उससे पहले आपको क्या गिव अवे मिलने वाला है उसकी इन्फॉर्मेशन ले लो. सो होको, वन ऑफ इंडियाज मोस्ट लव्ड फूड brand is now in Frisco, Texas. From their famous chana puri and sandwiches to delicious curries and the legendary Hoko cold cocoa, it's all here. 20% discount for students with a valid student ID and 20% discount for the employees on lunch packs, and it is available Monday through Friday during office hours. Visit Hoko at Preston Road in Frisco or learn more at hoko.us, hocco.us. And you could win a free plate of aloo tikki. हम अभी इतने सारे फूड आइटम्स की बात कर रहे हैं और उसमें जो बेताज बादशाह है वो है आलू, और उसी की टिक्की चाट अगर आपको चाहिए, free plate of aloo tikki chaat, तो you need to answer one simple question. फोन उठाइए, डायल कीजिए 972-235-5555 और आपको बताना है कि ऐसी कौन सी चीज है, विच इज दैट थिंग दैट हैज हैंड्स बट कैनॉट डू क्लैपिंग. स्टूडियो का नंबर है 972-235-5555. आपको बतानी है ऐसी चीज विच हैज हैंड्स बट कैनॉट डू क्लैपिंग. मैं आपके फोन का इंतजार करूंगी, तब तक चलते हैं नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ जो है अपने बच्चा पार्टी के लिए स्पेशली.

0: That was Chocolate Lime Juice, the evergreen song from the movie Hum Aapke Hai Kaun. अरे मुझे तो पता है मैं आपकी कौन हूँ. मैं हूँ आपकी फेवरेट, आपकी दोस्त और इस सुरीले सफर की साथी, द म्यूजिकल जर्नी ऑफ फूड, केतकी, आरजे केतकी. आप सुन रहे हैं फन एशिया रेडियो. और मैंने क्वेश्चन पूछा था कि ऐसी कौन सी चीज़ है विच हैज़ हैंड्स बट कैन नॉट क्लैप. मुझे बहुत सारे फोन्स आए हमारे लिसनर्स के, सो थैंक यू सो मच. बट एक ही विनर हो सकता है और विनर है प्रहोलिका. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू. हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी एंड देन यू विल गेट योर गिव अवे. बट बाकी के दोस्त जो जिन्होंने ट्राई किया उनको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है. ये फन एशिया है, यहाँ पे हर एक का ख्याल रखा जाता है. सो हियर कम्स द नेक्स्ट गिव अवे विच इज़ फ्रॉम बिरिस्ता Frisco. Get ready for a royal feast. The popular barista house from Denton is now in Frisco by Prism Bar and Grill. Enjoy authentic Hyderabadi biryani, North Indian favorites, delicious desserts and more. Bring your family and friends to 6377 Custer Road, Frisco, Texas and make it a feast to remember. Answer next question for a chance to win $20 gift coupon. Yes, you can win $20 gift coupon for dine-in only, and one winner will be selected. So, the question is, it is related to food. So, kaan dijiyega aur phone ready rakhiyega because I don't want you guys to miss out this giveaway. Question is, maa ka color hai green, lekin bacche nikalte hai काले. माँ का कलर है ग्रीन लेकिन बच्चे निकलते हैं काले. ऐसा कौन सा फूड आइटम है? स्टूडियो का नंबर है 9722355555 एंड हियर कम्स द नेक्स्ट सॉन्ग विच इज एंडिंग आवर सेगमेंट विच कैन नॉट बी नन अदर देन खई के पान बनारस वाला.
1: निकले थे हम हलवा खाने, मुंह ही जल गया है. का तुम का बताई, अब का समझाई, बड़ी दुर्घटना है, मुश्किल बचना है. चला ऐसा झगड़ हो.

कभी हुआ गए, कभी यहाँ गए, कभी हुआ गए, कभी इधर भगे, कभी उधर भगे, फिर तुमने दिया ये पान तो आई हमरी जान में जान, तो आई हमरी जान में जान, तो

That was Khai Ke Paand Banaras Wala. You are listening to 104.9 FM Fun Asia Radio. 104.9 FM. Yaad rakhiyega. Aur aap sun rahe the segment Gaano Ka Zaika with me, RJ Ketki. Maine pucha tha question ki the riddle was maa ka color hai green, lekin bachon ka color hota hai kala. To aisi kaun sa food item hai jo ye description ko मैच करता है तो आई गॉट द आंसर फ्रॉम मेनी फोक्स किसी ने कहा एवोकाडो किसी ने कहा वाटरमेलन बट नो द आंसर इज कार्डमम इलायची ग्रीन इलायची सो यात्रा यू आर द विनर यू आर गेटिंग द गिव अवे प्राइज फ्रॉम बरिस्ता एंजॉय इट एंड लेट अस नो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस सो थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग मी विद दिस म्यूजिकल फूड जर्नी और अब वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का आपको बाय बोलने का जाने से पहले चार शब्द और चार लाइन सुनाना चाहूँगी क्योंकि आज है संडे नाइट और कल से है मंडे सो खूनी मंडे तो नहीं होना चाहिए मंडे शुड बी ब्यूटिफुल मंडे शुड बी नाइस मंडे शुड बी मोटिवेशनल सो इफ़ यू आर सीरियस अबाउट चेंजिंग योर लाइफ यू'ल फाइंड अ वे एंड इफ नॉट then you'll find an excuse. RJ Ketki signing off from the studio. Enjoy rest of the night and I wish you all the best. Shabba Kher, Shubh Ratri. Jack, bottle, vodka, gun, mirror, rooster.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: बेटा, 95% आए?
3: हाँ मम्मी.
2: गुड. अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए.
4: मेरा?
2: हाँ. प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड.
4: वो
5: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. AG FinTax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG FinTax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
6: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
7: Aaj hi sunte ho, soch rahi thi bete ki shaadi India mein kare?
8: India mein? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
7: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
8: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
7: सच में? सब संभाल लेंगे.
8: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
5: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
9: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो.
10: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
5: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिको समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगा, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
2: इतना सब और प्राइस?
5: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन. समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
11: मैं हीरो.
12: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
13: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू. लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई. डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.
14: It's the time to clock out. It's the time to catch up.
15: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame. जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू, सिजलिंग फ्लेवर्स और चटपटे एपेटाइजर्स मेक एन ऑर्डिनरी वीकडे फील लाइक अ डिलीशियस सेलिब्रेशन. एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 5 to 8 PM. ऑर्डर एनी टू एंट्रीज एंड गेट वन एपेटाइजर एब्सोल्युटली फ्री. ब्रिंग योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योर एपेटाइट. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
16: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
17: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
16: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
18: तुमसे मिलके दिल का है.
17: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
16: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट डैलस में रेडियो का डैड फोनेशिया 104.9 FM
1: Yeah, it's coming up.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट।
3: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव।
2: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
3: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन।
4: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
5: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
6: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खान साहब जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खान साहब 6825516500 The Jago Times Commission Jago bhi jagao bhi Exclusive Media Partner Fun Asia
7: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन फ्रेंड्स को साउथ इंडियन अब जाए तो जाए कहाँ
8: सिंपल बसेरा ग्रैंड वन डेस्टिनेशन डबल द फ्लेवर
9: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा
8: यस रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानी और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं
9: वाओ ग्रेट फूड फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी
7: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड बसेरा ग्रैंड कम हंग्री लीव हैप्पी टुगेदर
10: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है
11: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन
12: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस
13: तुमसे मिलके दिल का है
11: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन
12: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क

solution and let the good times roll.

0: sex on your airwaves.
1: Turn it up.
0: Brought to you by Club Phonasia.
2: नमस्ते बहन और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत।

0: पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
1: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स, और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो, विजिट signaturecuisine.net। सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
2: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
3: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।

0: एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
1: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
0: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
2: तुमसे मिलके दिल का है।
1: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
0: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

Spreading love and understanding with best music. 104.9 FM.

0: बोरिंग दिन चर्या में
1: घोलिए नए रंग फन एशिया रेडियो के संग।
2: तन्नी आज तू मुझे देख लेगा ना तो 100 times I love you बोलेगा। By God, I'm looking red hot.

0: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame, jahan tandoor ki smoky khushboo, sizzling flavors aur chatpate appetizers make an ordinary weekday feel like a delicious celebration. Every Monday through Friday from 5 to 8 p.m. Order any two entrees and get one appetizer absolutely free. Bring your family, friends and your appetite. Visit Tandoori Flame in Garland. Terms and conditions apply.
1: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
2: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
3: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
4: तुमसे मिलके दिल का है।
2: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
3: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क। इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये, इश्क इश्क है।

0: कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: playing the music you want all day, every day, only on Fun Asia Radio.
1: हाँ भाई सेठी।
2: हाँ जी मनीपा जी।
1: पहुंच गए हैं?
2: पहुंच गया मैं। अरे अरे अरे अरे पाजी, घर तो बड़ा सही है, इत्थे तो पार्टी करनी बनती है।
1: ओ पार्टी दी कसरत तेनू हाले, पार्टी करदा दे है तू।
3: पाजी उस गोरे से घर लेके ना एक बार भी यहाँ आए हो?
1: हो गए बहुत साल हो गए, दादी नू मिलन आया सी एक बारी।
2: पाजी तुहाडी दादी मैनू बिल्ली वर्गी क्यों लग रही है?
1: तू लगता है तू पैग लाए हो या?
4: तू इधर कर, तू सो जा, आराम कर।
2: नहीं पाजी, एक ही बोतल पीती है, ज्यादा नहीं पीती, पर दादी बिल्ली वर्गी लग रही है।
4: ओए मेरी दादी नहीं है, उसे गोरी दी दादी होनी है। ओए तू पै जा, ओए तू सो जा,
1: मेरी फ्लाइट है, तू सो जा।
2: पर दादी

0: bringing the community together. Fun Issue Radio, 104.9 FM.
1: Yeah!

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: चार शनिवार होने।
1: बेटा 95% आए?
2: हाँ मम्मी।
1: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
3: मेरा?
1: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
3: वो
4: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintechs.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
5: Hi, this is Salim Merchant from Salim Suleiman, and you're listening to me on Fun Asia Radio.

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: कर फट जाए।
1: Bollywood, Tollywood, Lollywood. 24 karat pure on 104.9 FM.

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैड। डैलस में रेडियो का डैड फोनेशिया 104.9 FM।
1: Yeah, it's coming up.

0: जी सुनते हो?
1: जी नहीं, एजी सुनते हैं।
2: The OG of Tax Planning, AG Fintax. सुनेंगे आपके फाइनेंशियल कंसर्न्स, देंगे स्मार्ट सॉल्यूशंस। Every Friday 9:45 AM only on Funasia Radio.
3: Hi, this is Rani Mukherjee. You're listening to Funasia Radio.
4: 9 FM.

0: your favorite music on your favorite radio.
1: बिछड़ के तुझसे अब मुझे मरना है, ये तजुर्बा इसी जिंदगी में कर।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए, बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply. Sathiya.
3: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
4: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
2: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
5: तुमसे मिलके दिल का है।
4: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
2: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

104.9 FM. Fun Asia Radio. Fun Asia Radio. Non-stop infotainment.

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट। डैलस में रेडियो का डैड फोनेशिया 104.9 FM।
1: Yeah, it's coming up.

Spreading love and understanding with best music. 104.9 FM.

0: Festival season calling for desi outfits, mithai, namkeen, and all your favorite goodies. You can bring them home with SFL Worldwide with the doorstep pickup as well as delivery, plus ocean shipping for larger items like puja mandirs, jhulas, and furniture. For shipping and moving within the USA, from India to India, worldwide, you can visit sflworldwide.com. You can call them 800-691-2335. 800-691-2335. SFL. Ship for less. That's what it stands for. SFL Worldwide. Bringing festivities closer to home. Whatever you want shipped, they can help you. Whether it's just documents, boxes, an entire home, anywhere within the United States to India or anywhere across the world. Ladies and gentlemen, you're tuned to your morning drive time special. I'm in your cars with you, driving you to your destination. Thank you for letting me in. And I'm going to make sure that you are not just entertained with all these songs, but I will take your requests also. The lines are open, 972-235-5555. But I also will make sure that you are informed of what's going on here in town and around the world. We'll have the world news coming up every hour on the half hour. Stay with me right here.
1: Restaurant choose karna ho? Google reviews. Hotel book karna ho? Google reviews. Lekin bachcho ki doctor ki jab baat aaye to ek hi review sabse important hota hai. Maa ka review.
2: Isliye Dr. Farhad has been recognized as a DFW Child Mom Approved Pediatrician for 4 consecutive years, 2023 through 2026. Meet Dr. Nishat Farhad at Passion Health Pediatrics, serving families at Frisco and Aubrey, starting at the end of August. Passion Health Primary Care, because every healthy smile begins with trust. Care. Call 214-666-6259 and schedule your appointments today.
3: Immigration is a serious concern for our community, and when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, perm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
4: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
5: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer. Ab Dallas mein.
4: That magic removal ho. Love and relationship issues ho. Get trusted solutions with 100% privacy.
5: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn.
6: Samasya ka pakka samadhan.
4: Astrologer Ishwar.
5: Call now 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
7: जिंदगी एक रंगमंच है
8: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल. रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो. दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन. फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग एक्सपीरियंस अ स्मूथ, सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन. कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com.
9: ये तारा वो तारा हर तारा.
4: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स. कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
10: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
11: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
10: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
11: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
10: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
11: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
10: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338. दैट्स 817-786-3338.
12: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
6: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
8: कौन सा?
7: अरे वो गोल वाला थोड़ा ट्रेडिशनल उसमें पोलकी भी है
8: अरे सारे तो सेम है
7: नहीं वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने ये देखो ये वाला
8: ओ हाँ ये तो अलग है
9: अलग तो होगा ही श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है फ्रॉम टाइमलेस गोल्ड एंड रेडियंट डायमंड्स टू हेरिटेज पोलकीज डिस्कवर टेक्सास लार्जेस्ट हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी कलेक्शन नाउ एट मेन स्ट्रीट इन फ्रिस्को श्री कृष्णा ज्वेलर्स क्राफ्टेड फॉर मोमेंट्स दैट मैटर विजिट श्रीकृष्णा.com
10: Dude, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
11: फ्रंट पेज का तो पता नहीं पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है
10: कैसे
11: पेज 3 ईटरी
10: नो नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन
11: Dude, इट्स पेज 3 स्टार्ट विद द बार सिग्नेचर कॉकटेल्स क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग एवरी एपेटाइट
10: मतलब ग्रेट फूड ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी यानी कि मैं
12: पेज 3 ईटरी ईट सिप गॉसिप रिपीट
13: Hello Texas Parivar, where do you go when bank says no? Are you self-employed and are you struggling with your qualification? Yes, we have loan options for you. So call KJ Kamna Ko at 214-845-4189 kyunki aapka bharosa hi meri pehchan hai and this 926641.
14: Ocho.
15: Hoko.
14: Ocho.
15: Hoko.
14: Ocho.
15: It's Hoko.
16: अरे बस भी करो यार
15: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है
16: नाम होको हो या होचो क्या फर्क पड़ता है एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी आइकॉनिक सैंडविचेस डिलीशियस करीज चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा
9: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको अब फ्रिस्को में वही आइकॉनिक फ्लेवर्स वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस टेस्ट इंडिया रीलिव मेमोरीज Who are the employees your company simply cannot afford to lose? And are you doing enough to reward and retain them? An executive bonus plan using life insurance can be a flexible way to offer select key employees valuable protection today and potential future benefits later. To learn whether this strategy may fit your business, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms, and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult qualified legal and tax professionals before implementing any business insurance strategy. Not legal, tax, investment, or financial advice.
17: Hello, Weekend Lunch Emergency Helpline. How may I help you?
18: Hello, mere relatives aa rahe hain. Everyone's asking lunch mein kya hai?
17: Fikar not. We have the perfect solution.
9: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special. 25-plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
19: Bindas bolo. बोलो बोलो बोलो बिंदास बोलो
16: जब गाना बोले बिंदास तो शाम भी होगी बिंदास जॉइन बंदा बिंदास मार्विन दास मंडे से थर्सडे फ्रॉम 5 PM टू 7 PM फॉर म्यूजिक मस्ती और फुल ऑन एंटरटेनमेंट पावर्ड बाय टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर और हिमालयन बाजार सिर्फ फनीशा रेडियो पर
20: Let's get started with this hour of the program. If you are just joining us, please receive my very warm welcome to the show. Let's get this week started. It is the last day of summer. officially. And yes, our temperatures do show that. We are in the 70s, a little bit cooler. You can feel it in the air. No triples in the forecast. 96 yesterday, 96 on Saturday, and today also mid-90s. And looks like we might be 92 tomorrow and Wednesday. And of course, fall will start tomorrow. But we have had officially 67 days with absolutely no rain at all.

0: Sonu Nigam Revolution coming up for all of you this Saturday, and I'm sure you're going to be there. One more time, you can get your tickets at Ticketmaster, and for more information, you can also call 855-360-SHOWS, Revolution Sonu Nigam, at the Credit Union of Texas Event Center in Allen at 8:30 this Saturday. And we at Fun Asia Network are very proud to be the exclusive media partner of this huge concert happening here in town. I will play any Sonu Nigam song that you want to request now, and I'll take your calls 972-235-5555.
1: अरे यार घर मिल गया
2: घर तो देख रहा हूँ लेकिन इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग
3: इसलिए कॉल करो अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट अजय इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर वो सिर्फ घर नहीं दिखाते हर प्रॉपर्टी का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करते हैं बिल्डर इंसेंटिव दिलवाते हैं और क्लोजिंग पर कैशबैक भी
2: सीरियसली अच्छे सर्विस भी और कैशबैक भी
3: बिल्कुल विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई सो मेनी पीपल आर रेविंग अबाउट हिम
4: अगर किसी चीज को दिल से चाहो
5: तो पहले चेक कर लो उस पे डील है या नहीं
6: डील कहाँ
5: सिंपल पास्या पे इंट्रोड्यूसिंग पास्या डिस्कवर एक्साइटिंग डील्स एंड ऑफर्स एट रेस्टोरेंट्स नियर यू राइट नाउ ओपन पास्या सी व्हाट्स अराउंड यू फाइंड अ डील एंड ग्रैब इट बिफोर इट्स गॉन
3: डाउनलोड पास्या दैट्स PASYA टुडे बिकॉज़ डील्स दूर नहीं पास है
7: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
8: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
7: Kya matlab?
8: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
7: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
8: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
7: Ab to karna hi padega, madam.
9: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
10: Family ko chahiye North Indian, friends ko South Indian. Ab jaye to jaye kahan?
3: Simple. Basera Grand. One destination, double the flavor.
11: Matlab crispy golden dosa?
3: Yes. Rich North Indian favorites, flavorful loaded biryanis aur ek delicious buffet jahan choices hi choices hain.
11: Wow! Great food, full variety and everyone's happy.
10: Family dinner ho ya friends ke saath celebration. Make every meal grand at Basera Grand. Basera Grand. Come hungry, leave happy. Together.
12: Zindagi ek safar hai suhana. Yahan kal kya ho, kisne jana.
3: Life ho ya health, kab kya ho jaye, pata nahi. 13 saal tak Texas Primary Care Clinic ने जीता आपका ट्रस्ट और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मंदीप आचार्य एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर अर्जेंट केयर एक्सरे सीटी स्कैन हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा सब कुछ एक ही रूफ के नीचे लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर ओपन 7 डेज अ वीक 8 AM टू 8 PM वॉक इन एनी टाइम 9191 काइजरवे स्वीट 205 फ्रिस्को
13: सेम ऑर्डर अगेन सेम पिज्जा सेम टेस्ट सेम स्टोरी टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग Dallas, because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
14: Sadia.
15: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है
16: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन
3: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस
17: तुमसे मिलके दिल का है
16: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन
3: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क
18: इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये, इश्क इश्क है।

अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजें फ्रॉम द मूवी कसूर.

0: The first one to give me the right answer was Devdas Sanavane, and he will get free giveaway from the Fusion Republic Indian Kitchen and Bar, their new location in Irving at 8080 Walton Boulevard. And he can get either the Siraga Sambhar or Dum Mutton Biryani or the Vegetable Dum Biryani, whatever he prefers. But any of you can go enjoy their delicious 25-item lunch buffet every single day. And at dinner, they have an a la carte menu.
1: अरे अरे अरे डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर टू डेकेड्स। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
2: Dallas has its own superheroes, fighting dust, clogs, blocked vents, and hidden fire hazards every day. And now, the superheroes of ducts are turning one. Duct Time celebrates its first anniversary in Dallas. For Duct Time services, call Jeetu Patel at 972-877-2500 and book your appointment today for a cleaner, safer, and fresher home.
3: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
4: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
5: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
6: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
5: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
7: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट।
8: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुराटा चिकन टिक्का न्यू लव।
7: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
8: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन।
9: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
10: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी।
11: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
1: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
11: इतना सब और प्राइस?
1: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन, समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
12: मैं ही दो।
13: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
14: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
15: Hi, I'm Rajkumar Rao, and you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

Injured in a car, truck or slip-and-fall incident? Focus on healing while attorney Umar Khwaja fights for you. And you pay nothing unless he wins. Call 469-300-5046 or visit attorneyomar.com. तो चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं. कुछ प्यारे खूबसूरत गानों का सफर चल रहा है. जल्दी से अगले गाने की तरफ लेकर के चलते हैं आपको. एंड वी आर ऑन अ टाइम मशीन राइट नाउ. सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड आइकॉनिक सॉन्ग्स ऑफ द 90s आर हियर फॉर यू.

0: जाना।
1: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM to 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइज़रवे स्वीट 205 फ्रिस्को।
2: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
3: Beta, 95% आए?
4: हाँ मम्मी।
3: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
5: मेरा?
3: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
5: वो
1: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintechs.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
6: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
7: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
6: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
7: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
6: सच में सब संभालेंगे?
7: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
1: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770। वेनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
8: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
9: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
10: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
11: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
10: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
1: What would happen to your business if a key owner, partner, or top employee passed away unexpectedly? Would revenue, credit, client relationships, or daily operations be affected? KeyPerson Life Insurance can help provide funds to support the business during a difficult transition. Protect the people who help keep your business running. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Benefits and tax treatment depend on individual circumstances. Consult qualified legal and tax professionals. Not legal, tax or investment advice.
12: Sathiya!
13: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
14: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
1: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
15: तुमसे मिलके दिल का है।
14: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
1: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
16: डोंट touch that dial. Keep listening.
17: Welcome back after this very short commercial break और स्वागत है फिर से एक बार आपका गपशप गली में। और यहाँ पर अभी हम बहुत ही प्यारे और खूबसूरत 90s की ट्रैक बजा रहे हैं। We are literally on a time machine, some amazing tracks lined up for you, तो कहीं मत जाइए, सुनते रहिए Fun Asia 104.9 FM और आपकी होस्ट आयुषी आपको करते रहेगी ऐसे ही एंटरटेन।

0: An investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
1: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get coasted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
3: Bindas bolo. Bolo, bolo, bolo, bindas bolo.
4: Jab gaana bole bindas, to shaam bhi hogi bindas. Join Banda Bindas, Marvindas, Monday se Thursday from 5 p.m. to 7 p.m. for music, musti, or full-on entertainment. Bindas, powered by Texas Star Rehab and Performance Center or Himalayan Bazaar. Sirf Anisha bindas, Radio par.
5: The Dill of Dallas. Heart to Heart, Fun Asia.
6: वेलकम बैक टू फन एशिया 104.9 एफएम. आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को और गपशप गली में आपका फिर से एक बार स्वागत है. फिलहाल हम उस 90s नॉस्टैल्जिया की तरफ हैं. एक्चुअली हम कहेंगे कि ये टाइम मशीन है, एक टाइम मशीन की तरफ हम चल चुके हैं जहां पर बहुत ही प्यारे और खूबसूरत गाने बना करते थे. एंड दीज वर नॉट द बॉलीवुड सॉन्ग्स, फिल्मों के गाने नहीं हुआ करते थे. ये वो ट्रैक्स हैं जिनको एल्बम्स कहते थे हम अपने टाइम पे. आजकल तो सब कुछ ही म्यूजिक एल्बम है, पर हम लोग उस समय इसको एल्बम्स कहते थे. और फिल्मों के ना एक्टर्स होते थे ना एक्ट्रेसेस होती थीं. दे वर ऑल द सिंगर्स देमसेल्व्स और सम ऑफ द मॉडल्स फ्रॉम दैट टाइम. सो उसी कुछ खूबसूरत गानों की तरफ आपको लेकर के चल रही हूँ. हैज अ ब्यूटिफुल ट्रैक इन द वॉइस ऑफ श्वेता शेट्टी, इफ़ यू रिमेंबर हर. इस गाने से ज़रूर याद कर लीजिएगा आप उनको.

तो ये था एक और बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा ट्रैक। अब आप लोग भी फरमाइश दे सकते हैं, अगर आपको ये सेगमेंट पसंद आ रहा हो, ये गाने पसंद आ रहे हो, तो प्लीज़ स्टूडियो के नंबर पे कॉल करिए जो कि है 972-235-5555। और इस दौर के कुछ गाने अगर आप सुनना चाहेंगे तो कॉल करिए, क्योंकि अगले 10 मिनट सिर्फ और सिर्फ यही चलेगा, द 90s टाइम मशीन।

That was Shreya Ghoshal and Ustad Sultan Khan. बहुत ही प्यारा सा गाना. और अगले गाने की तरफ लेकर के चलते हैं जल्दी से, क्योंकि वक्त हो रहा है छोटे से कमर्शियल ब्रेक का. मैं नहीं चाहती हूँ गाना बीच में ही कट जाए, तो अगले गाने की तरफ लेकर के चल रहे हैं. ये गाने की फरमाइश आई है हमारी कॉलर कामिनी जी की तरफ से, तो हियर्स दिस ब्यूटिफुल ट्रैक. क्वेश्चन पूछ ले साथ में, हु डू यू थिंक इज द एक्टर इन दिस सॉन्ग. उस समय वो एक्टर बने नहीं थे, कौन है बताइए कॉल करके.

0: साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
3: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
4: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स। और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा, ईस्ट प्लेनो। विजिट signaturecuisine.net. सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर। रेस्टोरेंट चूज करना हो, गूगल रिव्यूज। होटल बुक करना हो, गूगल रिव्यूज। लेकिन बच्चों के डॉक्टर की जब बात आए तो एक ही रिव्यू सबसे इम्पोर्टेंट होता है, माँ का रिव्यू।
2: इसलिए डॉक्टर फरहाद हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ DFW चाइल्ड मॉम अप्रूव्ड पीडियाट्रिशियन फॉर 4 कंसेक्यूटिव इयर्स, 2023 थ्रू 2026। मीट डॉक्टर निशात फरहाद एट पैशन हेल्थ पीडियाट्रिक्स, सर्विंग फैमिलीज एट फ्रिस्को एंड ऑब्री, स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ ऑगस्ट। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, बिकॉज एवरी हेल्दी स्माइल बिगिंस विद ट्रस्टेड केयर। कॉल 214-666-6259 एंड शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट्स टुडे।
5: भूख लगी, जोरों की भूख लगी।
6: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
7: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 Eatery। ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
2: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी। What would happen to your business if a key owner, partner, or top employee passed away unexpectedly? Would revenue, credit, client relationships, or daily operations be affected? KeyPerson Life Insurance can help provide funds to support the business during a difficult transition. Protect the people who help keep your business running. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Benefits and tax treatment depend on individual circumstances. Consult qualified legal and tax professionals. Not legal, tax or investment advice.
8: Paneer Manchurian ka naam to suna hoga, par chili paneer bao kahani mein twist.
9: Chicken tikka purani mohabbat, but burrata chicken tikka new love.
8: And pistachio lamb chops,
9: full on flavor ka fusion.
10: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic, now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
11: Hi, this is Deepika Padukone and you're listening to Fun Asia Radio.
12: Zindagi ke kai rang, फनीशा रेडियो के संग।
13: हेलो, नमस्ते एंड वेलकम बैक आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। स्वागत है आपका गपशप गली में और हम आपको लेके चल रहे हैं फिर से अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जहां पे आज हम सेलिब्रेट करेंगे एक एक्ट्रेस का जन्मदिन। अब भाई बड़ी सिंपल सी बात है, एक्ट्रेस का जन्मदिन है, उसके गाने बजा दो। लेकिन मैं इसके साथ एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी। एक दौर था जब ना हम वेट करते थे उन एक्टर और एक्ट्रेसेस के आने का जो कि किसी बड़े एक्टर के बच्चे हुआ करते थे। उस समय ना ये नेपोटिज्म का ट्रेंड नहीं चल रहा था, हैशटैग्स नहीं ट्रेंड होते थे, और उस दौर में एक्चुअली वेट किया जाता था कि जब अमिताभ बच्चन का बेटा बड़े पर्दे पर आएगा, या फिर अगर रणधीर कपूर की बेटी बड़े पर्दे पर आएंगी तो कैसा रहेगा। मैं उस फिल्म की बात कर रही हूँ रेफ्यूजी, जिसमें इन दोनों ने साथ में किया था। मैं बात कर रही हूँ अभिषेक बच्चन और करीना कपूर की। और आज क्योंकि करीना का जन्मदिन है 21 सितंबर, सो सोचा क्यों नहीं उनके मूवी के कुछ गाने प्ले किए जाएं और थोड़ा सा ये ट्रेंडिंग नेपोटिज्म वाले हैशटैग से निकल करके पुराने समय में चले जाएं, जहां पे एक्चुअली इंतज़ार होता था, जब पता लगता था कि पर्दे पे ये एक्टर्स आने वाले हैं, या फिर जिन एक्टर्स के बारे में पता नहीं होता था कि ये किसी के बेटा या बेटी है या उनकी फैमिली से आते हैं तो पता करते थे. एंड हम लोग ऑब्वियसली कंपैरिजंस करते थे कि यार ये अमिताभ बच्चन का बेटा है, ये उनकी तरह एक्टिंग कर पाएगा या नहीं कर पाएगा. लेकिन कभी दिमाग में ख्याल नहीं आता था कि नेपोटिज्म नाम की भी कोई चीज़ है, कोई ऐसी हवा है जो चल रही है. बट एनीवेज ये थॉट अलग है. इसके साथ साथ आज सेलिब्रेट करते हैं करीना का बर्थडे. क्यों ना मैंने सोचा क्यों ना एक बहुत ही प्यारा सा गाना प्ले करें उसकी पहली फिल्म से. सो विशिंग हर अ वेरी हैप्पी बर्थडे एंड टेकिंग यू टूवर्ड्स दिस वेरी ब्यूटिफुल ट्रैक एज वेल.

So here was this beautiful track from the movie Refugee, करीना की पहली फिल्म. एंड इनका जन्मदिन है आज, तो आज इनकी ही फिल्म के कुछ गाने प्ले कर रहे हैं. और उम्मीद करती हूँ कि आप भी कॉल करेंगे और फरमाइश देंगे. पहली फरमाइश ऑलरेडी आ चुकी है सफ़ी की तरफ से. वील गो टूवर्ड्स दैट सॉन्ग, लेकिन उसके पहले डिस्कवर श्री कृष्णा ज्वेलर्स एंड एक्सप्लोर अ स्टनिंग हैंड क्राफ्टेड कलेक्शन ऑफ गोल्ड, डायमंड, पोलकी एंड मोर, विद डिज़ाइंस फॉर एवरी ओकेजन, एवरी स्टाइल. विजिट 13145 मेन स्ट्रीट, स्वीट 20220, फ्रिस्को. और यू कैन कॉल देम एट 4302311111. श्री कृष्णा ज्वेलर्स, फ्रिस्को में. तो चलिए अगले गाने की तरफ जल्दी से आपको लेकर के चलते हैं. दिस सॉन्ग हैज बीन रिक्वेस्टेड बाय सफी, वन ऑफ आर रेगुलर कॉलर्स.

0: So here was this beautiful track. और अब हमारे साथ हैं on air पंडित ईश्वर जी. नमस्कार पंडित जी.
1: नमस्कार.
0: कैसे हैं आप? तो आज का राशिफल हमारे लिसनर्स के लिए आप लेकर के आए हैं, प्लीज बताएं उस बारे में.
1: Absolutely, this week राशिफल, first we go from Aries. Career matter become more active this week for them. Depending on task or any final move forward will come. Avoid rushing financial decisions. Family communications, you need to be very patient. And Taurus, good week for organizing the finance and completing unfinished work. Support from family is possible. Avoid unnecessary arguments, especially over money. And Gemini, the communication and networking are important. You may receive useful information regarding work or business. Keep spending under control and think before making any commitments. Cancer, family and personal responsibility may increase. Work can bring good opportunities. You will be emotional this week, so have a control of it. A good week to focus on stability. Leo, your confidence improve. Career-related decisions can bring good progress. Be careful with ego clash and avoid taking unnecessary risks. Virgo, this is an important week for planning a career matter. Mercury, like strong position, supports communication, learning particular decisions. Financial improvement is possible through disciplining. Libra, relationship and partnership receives attention this week. Speak openly but calmly. From the weekend, the Libra can bring more focus to communication and arrangements. And Scorpio, work responsibilities increase, but determination help you handle them. A good period for solving all the world problems. Don't allow small disagreements to become major issues. Sagittarius, you may feel motivated to make changes in your career or personal life. Traveling is possible this week. Communication may bring useful opportunities. Patience is very important. Capricorn, money and family matter need careful attention. Avoid overthinking. This week favors particularly decision rather than emotional. Aquarius, career and work-related matter can gradually improve. Networking may be useful. Watch unnecessary expenses and maintain good communication with people close to you. So, and last, Pisces, a week of balancing work, money, and personal responsibility. Don't take on everyone's problems to your problem. Focus on your own opportunities, own problems, and maintain a steady routine. So this is what this whole week.
0: Okay. Thank you,
1: Miss. For further information, you can call astrologer Ishwar. My phone number is 945-527-0897. Or visit my website www.astrologerishwar.com.
0: Okay, thank you so much Panditji for this information.
1: You're most welcome.
0: तो चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं. ये थे पंडित ईश्वर जी एंड आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं 945-527-0897 पर. और ये हमारे लिए वीकली एस्ट्रोलॉजी आपका लेकर के आते हैं. शो को आगे बढ़ाते हैं. हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं आज करीना कपूर का, करीना कपूर खान का. भाई कपूर सरनेम के साथ बॉलीवुड में एंट्री हुई थी इनकी, इसलिए इनके लिए सफर आसान नहीं था. रणधीर कपूर की बेटी, बबीता की बेटी और उसके साथ साथ करिश्मा कपूर की बहन, जहां करिश्मा ऑलरेडी एक बहुत ही अच्छे स्टेटस को अचीव कर चुकी थी बॉलीवुड में, और उसके बाद उनकी बहन का आना, ऑब्वियसली कंपैरिजंस तो होने ही हैं. और कंपैरिजंस हुए तो इन कंपैरिजंस के से उभरी हैं करीना, कई सारी मूवीज करी उन्होंने और कई सारे बैक स्लैशेस पाए, इतना आसान नहीं होता है. अगर नेपोटिज्म का दूसरा साइड देखो ना तो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि ऑलरेडी आप एक ऐसी फैमिली से आ रहे हो, मे बी आपको मूवीज मिलना आसान हो जाती होंगी, बट लोगों के दिल में जगह बनाना, या फिर यू नो एक बहन को या फादर या जिस भी आप सेलिब्रिटी से रिलेटेड हो उसकी इमेज को हटा करके अपनी इमेज बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है. एंड आई थिंक करीना हैज डन दैट प्रीटी वेल. एक अलग ही यू नो स्टाइल और मतलब ऐसे लगता है देख करके एकदम मज़ेदार सी कोई लड़की बेझिझक. जो गीत का कैरेक्टर उन्होंने किया है वो मेरा फेवरेट है, बहुतों का फेवरेट होगा, बट उसके पहले जब वो कभी खुशी कभी गम में आई थी, देन दिस डायलॉग वन आर हार्ट्स टू. कौन है वो, कौन सा है वो डायलॉग, क्या याद है आपको?
2: कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? Who is he?
0: ये पू का जो कैरेक्टर था थोड़ा सा अनोइंग, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा यू नो स्टाइलिश, सब कुछ मिला जुला कैरेक्टर. ऐसे ही बहुत सारे किरदार करीना ने प्ले किए हैं. अगले गाने की तरफ लेकर के आपको चल रही हूँ जो कि कभी खुशी गम से है, कभी गम से ही है.

0: are you?
1: Who are you? Oh my god, love that attitude. And ye jo Pooh ka kirdaar tha, ek pop culture phenomenon leke aaya tha. And Kareena, that glamorous look, attitude, comic timing aur dialogue, sab kuch instantly iconic ho gaya tha. Aur aaj bhi aise jo lines hai na, who are you? Bolne mein bada maza aata hai yaar. एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि करीना ने बहुत जल्दी इस्टेब्लिश कर दिया था कि वो सिर्फ ट्रेडिशनल हीरोइन बनने नहीं आई हैं यहाँ पर और अलग अलग किरदार निभाए. शी टुक टाइम, कुछ फिल्में की उन्होंने, रिफ्यूजी आई, फिर मुझे कुछ कहना है आई, जिसमें वो तुषार कपूर के साथ दिखी, एंड देन केम कभी खुशी कभी गम. एंड वहाँ से करीना ने हर तरह के किरदार निभाए हैं. सो दिस अ ब्यूटिफुल सॉन्ग दैट आई एम प्लेइंग राइट नाउ. ये गाना है फिल्म चमेली से और इसकी फरमाइश आई है मेरे पास हमारे कॉलर की तरफ से. एंड चमेली वॉज वन ऑफ दोज फिल्म्स जिसने ना बिल्कुल ही उनके ये जो ग्लैमरस रोल था पू से, उससे कॉन्ट्रोडिक्ट्री कैरेक्टर किया था उन्होंने, एंड दैट गॉट अ लॉट ऑफ एप्रिसिएशन.

0: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? Omar Khwaja.
1: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
2: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame, jahan tandoor ki smoky khushboo, sizzling flavors aur chatpate appetizers make an ordinary weekday feel like a delicious celebration. Every Monday through Friday from 5 to 8 p.m., order any two entrees and get one appetizer absolutely free. Bring your family, friends and your appetite. Visit Tandoori Flame in Garland. Terms and conditions apply.
3: यार फेस्टिवल सीजन आ रहा है और मेरी वाइफ ने शॉपिंग लिस्ट भी दे दी है.
2: कितनी लंबी लिस्ट है?
3: बस दो पेजेस. इंडियन ड्रेसेस, मिठाई, नमकीन और हाँ एक पूजा मंदिर भी.
2: अरे तो सब कुछ इंडिया से ही मंगवा लो, SFL वर्ल्डवाइड है ना. इंडिया में आपके डोर स्टेप से सामान पिकअप करके यहाँ सीधा आपके घर डिलीवर करते हैं. पूजा मंदिर हो, झूला हो या फर्नीचर, सामान छोटा हो या बड़ा, ओशन फ्रेट के थ्रू सब शिप हो सकता है.
4: दिस फेस्टिव सीजन इंडिया को अपने और करीब लाएं विद SFL वर्ल्डवाइड शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू द USA एंड वर्ल्डवाइड. विजिट SFLWorldwide.com.
5: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय करूं.
6: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
1: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगा, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
7: इतना सब और प्राइस?
1: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन. समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
8: मैं ही तो.
9: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
10: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
9: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
10: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
9: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
10: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
9: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338. दैट्स 817-786-3338.
11: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
12: Bindas Bolo. बोलो बोलो बोलो बिंदास बोलो.
13: जब गाना बोले बिंदास तो शांति होगी बिंदास. जॉइन बंदा बिंदास मारविन दास मंडे से थर्सडे फ्रॉम 5 PM टू 7 PM फॉर म्यूजिक मस्ती और फुल ऑन एंटरटेनमेंट पावर्ड बाय टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर और हिमालयन बाजार. सिर्फ फनीशा रेडियो पर.
14: वेलकम बैक आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. और करीना का जन्मदिन मना रहे हैं हमारे स्टूडियो से फनीशा 104.9 FM से. आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को और स्टूडियो में हूं मैं, आपकी फरमाइशें ले रही हूं. लेकिन फिलहाल इस सेगमेंट में अगले आधे घंटे तक सिर्फ और सिर्फ करीना के गाने बजेंगे, तो प्लीज कॉल करिए और अपनी फरमाइश दीजिए 9722355555. और ब्रेक पे जाने के पहले हम बात कर रहे थे कि आजकल ये बड़ा नेपोटिज्म का ट्रेंडिंग सीजन चल रहा है, जहाँ पे कोई भी नया आता है तो बस उसको नेपो किड बोल के ट्रोल कर देते हैं. बट वो भी दौर था 2000s में जब करीना की पहली फिल्म आई थी और हम इंतज़ार करते थे करीना और अभिषेक को साथ देखने के लिए रेफ्यूजी में. और करीना ने अपने एक्टिंग पे बहुत काम किया, बहुत मेहनत की है, तब जा करके उन्होंने अपने अलग अलग किरदारों को आज भी हमारे दिल में जिंदा रखा हुआ है. जैसे अभी मेरी कॉलर का कॉल आया था और हम बहुत देर तक हमने बातें करी इस ब्रेक के दौरान, जहाँ पर वी वर टॉकिंग अबाउट कि कैसे उन्होंने पू के कैरेक्टर, कितने सारे डायलॉग्स हैं जो आज भी सोचिए कभी खुशी कभी गम को आए हुए ऑलमोस्ट 20 साल से ऊपर हो चुके हैं, फिर भी वो डायलॉग्स हमें अच्छे से याद हैं. वो कौन है जिसने दोबारा मुड़कर मुझे नहीं देखा, एंड द वे शी सेज आई लाइक इट. तो ये चीज़ें अभी भी हैं. शी हैड शी हैज़ worked on herself and she improved herself and इन सारे characters के बाद जब उन्होंने चमेली का किरदार play किया तो उन्हें बहुत ज़्यादा critically acclaim किया गया. एक sex worker का किरदार था and वही गाना मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई थी जो अधूरा रह गया, तो जल्दी से उसको करते हैं पूरा.

0: No insurance or Passion Health. Or Passion Health is out of your network. Get affordable primary care with Passion Health Direct or for just $85 a month, including primary care, preventive care, medication management, telehealth, and more. Call or text 214-666-6259 or visit passionhealthphysicians.com. This program is not health insurance. Eligibility restrictions do apply. Also, their Frisco location is open on Saturdays and Sundays too. तो आपके पास अगर इंश्योरेंस नहीं है या फिर पैशन हेल्थ आपके नेटवर्क के बाहर है तो भी आप अफोर्डेबल प्राइमरी केयर ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ पैशन हेल्थ डायरेक्ट के साथ $85 अ मंथ में. तो भाई जाइए जल्दी से कॉल करिए इनको 214-666-6259 पे. अपने शो को आगे बढ़ाते हैं. करीना के कुछ मज़ेदार गाने सुन रहे हैं हम. एंड थैंक यू टू ऑल माय लिसनर्स हु आर कंट्रीब्यूटिंग और मुझे बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे गाने और डायलॉग्स याद भी करा रहे हैं.
1: आज कोई स्पेशल ओकेजन
2: नहीं, मैं तो हमेशा बकवास करती हूं. तुम
1: नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम है एक्चुअली. तेरी जैसी मिली नहीं ना आज तक.
0: ये जो डायलॉग था ना, ये इसने हम लड़कियों में बकवास करने की कॉन्फिडेंस बढ़ा दी थी. बिकॉज ऐसे हम बकवास करते हैं और हम खुल के बोलते भी हैं, लेकिन हम बहुत घबराते थे अनजान लोगों के सामने खुलने में. और गीत का ये कैरेक्टर देखा ना तो ऐसा लगा कि यार ऐसे होना चाहिए इंसान को. खुल के बोलो, जो मन में है वो बस बोल ही डालो, बक ही डालो, सोचो मत. एंड दिस वॉज वन ऑफ द मूवीज़ जहाँ पर ना उन्होंने एक बहुत ही मज़ेदार किरदार निभाया था और एक्चुअली ईजिली कनेक्टेबल किरदार निभाया था. एक वो फेज़ जब हम लड़कियाँ बहुत चुलबुली, बहुत एनर्जेटिक होती हैं, और एक दूसरा फेज़ जहाँ पर दिल टूटने के बाद अचानक से ना बिल्कुल चेहरा बदल जाता है. वो दिल सिर्फ प्यार में नहीं टूटता है, कहीं भी यार, मतलब अगर लाइफ में किसी भी मोमेंट में ऐसा बड़ा सा झटका लगता है तो इंसान कैसे रुक जाता है, सहम जाता है, थम जाता है, वो यहाँ से सीखा था हमने.
2: रेलवे के दाम तो कम होते हैं.
0: कुछ और डायलॉग्स करीना के.
2: कंज्यूमर कोर्ट से पूछो क्या रेट है, पैसे वापस दो.
1: सुन, तूने रूप को बताया था कि हम भाग रहे हैं.
2: क्यों भागी? You bastard! साले सुअर की औलाद, तुझे क्या लगा तू मुझे छोड़ देगा? तुम्हें जिंदगी भर तड़पती रहूंगी, तड़पेगा तू कमीने, कीड़े पड़ेंगे तेरे ऊपर, कुत्ते की मौत मरेगा और मरने के बाद हमेशा हमेशा के लिए नरक की आग में जलेगा तेरी मां की.
1: ऐसा
2: काम करने का मौका शायद फिर कभी.
1: अरे लिसन टू मी.

Here was this beautiful track from the movie Jab We Met. शो को आगे बढ़ाते हैं और कुछ देर और सुनेंगे करीना कपूर के गाने. आज उनका जन्मदिन है और सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं हम अपने स्टूडियो से. फिलहाल टेक्सस बिजनेस ओनर्स के लिए ये खबर है दैट इफ यू लुकिंग फॉर अ स्मार्ट कमर्शियल एनर्जी सॉल्यूशन ट्रस्ट तारा कमर्शियल एनर्जी प्राउडली सर्विंग टेक्सस बिजनेस सिंस 2002 विद कॉम्पिटिटिव रेट्स रिलायबल सर्विस एंड कस्टमाइज एनर्जी प्लान्स. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com. चलिए अगले गाने की तरफ जल्दी से लेकर के चलते हैं आपको. ये भी करीना की ही फिल्म से है.

दैट वॉज अनदर ब्यूटिफुल ट्रैक करीना की फिल्म से, और वैसे ही गाने मतलब उनके ही गाने बज रहे हैं आज. टुडे इज अ 46th बर्थडे एंड वी आर सेलिब्रेटिंग वन ऑफ द डिवाज ऑफ बॉलीवुड हु हैड मेड हर प्लेस. मैनी टाइम्स कॉल्ड एज अ नेपो किड, हर बार इस हैशटैग से उनको सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराया गया है, बट करीना ने अपनी जगह खुद बनाई है इंडस्ट्री में. बहुत आसान है ये कह देना कि इनको फिल्में मिल गई होंगी, लेकिन क्या हम लोग, हम जैसे लोग जो यहाँ बैठ के फिल्मों को देखते हैं और इनमें खामियां निकालते हैं या इसकी बड़ाइयाँ करते हैं, क्या इतनी जगह इन स्टार्स की जगह अपने मन में बना लेते हैं? कई सारे ऐसे सेलिब्रिटी हैं जिनके बच्चे आए और चले गए, पता भी नहीं चला, बट फ्यू ऑफ देम हैड मेड देयर प्लेस इन इंडस्ट्री, एंड उनमें से एक करीना कपूर हैं. एंड वन मोर फैक्ट दैट मेक्स मी लव हर इज द वे शी हैज़ चोजन her self to age. She is 46 today and she looks fabulous, and she has chosen not to go for any treatments on her face, kisi tarah ka koi bhi botox ya fir fillers nahi karana chahti hain, and that she has told to the media bahut hi openly. अपने खान पान का, फिटनेस का ध्यान रखती है. मैं फॉलो करती हूँ करीना को, इसलिए आई नो दैट खान पान का, फिटनेस का ध्यान रखती है, बट शी हैज़ चोजन टू एज ग्रेसफुली एंड शी इज़ डूइंग दैट. शी इज़ एब्सोल्युटली डूइंग दैट, एंड दैट एक्चुअली यू नो मेरे दिल को ये बात बहुत ज़्यादा पसंद आती है, बिकॉज आई ऑल्सो चूज़ टू डू द सेम जस्ट लाइक हर. आज के दौर में जहाँ पे हर दूसरा सेलिब्रिटी फिलर्स और पोटॉक्स और यू नो फेस लिफ्ट के पीछे बढ़ा हुआ है, वहाँ पर करीना इज़ वन ऑफ दोज एक्ट्रेसेस हुज चोजन टू एज ग्रेसफुली, एंड लव हर फॉर दैट. विशिंग हर अ वेरी हैप्पी बर्थडे एंड टेकिंग यू टूवर्ड्स वन मोर ब्यूटिफुल सॉन्ग फ्रॉम हर मूवी जब वी मेट. ये रहा वो खूबसूरत गाना.

0: country's first long-distance calling card, Keith. उन लोगों के लिए जो ज़्यादा बातें करना पसंद करते हैं।
1: Excuse me sir, India में आपको calling cards का idea कैसे आया?
0: दुनिया छोटी होती जा रही है और India बड़ा होता जा रहा है। आज हम दुनिया भर से बातें करते हैं। Idea ये है कि

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Shaadi byah ka koi mauka ho ya koi tyohar, khoobsurat libas khushiyon ko dugna kar deta hai.
7: Har khushi mein aapke saath, Manyavar Mohe, traditional celebration wear for men, women and children, crafted with exquisite blended fabrics. Manyavar Mohe, located on Regent Boulevard of 635 East in Irving.
8: Beta, 95% aaye?
9: Haan, mummy.
8: Good. Ab chaliye, papa. Aap apna report card dikhaiye.
10: Mera?
8: Haan. Profit margin, cash flow, tax planning, business goals. Sare accounts updated?
10: वो
11: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने एजी फिनटैक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी कैश फ्लो टैक्स प्लानिंग बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज विजिट agfintax.com कॉल 972-618-8555 एजी फिनटैक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
12: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट
13: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव
12: एंड पिस्ताचियो लैम्ब चॉप्स
13: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन
14: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
15: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
16: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
15: Kya matlab?
16: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
15: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
16: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
15: Ab to karna hi padega, madam.
17: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
18: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
19: Sadia. कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है
20: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन
19: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस
21: तुमसे मिलके दिल का है
20: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन
19: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क
22: Hi, this is Vinay Pathak, and you're listening to me on Fun Asia Radio.
23: You on the right track.
2: Hello and welcome back to Fun Asia 104.9 FM. छोटे से commercial break के बाद आपका स्वागत है और हम पहुंच गए हैं studio में फिर से आपको प्यारे-प्यारे गाने सुनाने के लिए. तो भाई ब्रेक पे जाने के पहले करीना का जन्मदिन मनाया, और अभी भी ऐसा लग रहा है कि लोगों को उनकी ही फिल्म के गाने सुनने हैं, बिकॉज मैंने जो गाने प्ले किए हैं वो सुन के बड़ा मजा आया सबको, एंड दे आर रिक्वेस्टिंग फॉर फ्यू मोर सॉन्ग्स फ्रॉम करीनाज फिल्म. तो चलिए लेकर के चलते हैं उन गानों की तरफ, करीना के फिल्म के कुछ प्यारे खूबसूरत गाने. वजह बता दूं क्योंकि आज उनका 46 बर्थडे है, एंड वी आर ट्राइंग टू सेलिब्रेट दिस ब्यूटिफुल दीवा ऑफ बॉलीवुड.

0: 好的。कल सुबह तक ब्लू हार्ट को पैकेज के डिलीवरी हो जानी चाहिए।
1: क्या है इस बार?
0: कोई? जो हमेशा।
2: बोर नहीं होते तुम लोग?
1: बोर हो गया मैं।

देख गज्जा को बोल कि आज रात को मिठाई का डिब्बा आएगा, कल सुबह तक ब्लू बर्ड को दिल्ली में डिलीवरी हो जानी चाहिए, दिल्ली में। समझ गया?

तो लंच का समय हो रहा है और आप जा सकती हैं तंदूरी फ्लेम। अगर बटर चिकन, बिरयानी, पनीर टिक्का या दाल मखनी आपके जैसा लंच या डिनर साउंड करता है तो अभी जाइए तंदूरी फ्लेम गार्लैंड में। एंड नाउ देयर इज अनदर रीजन टू गो फ्लेम आवर, मंडे टू थर्सडे फ्रॉम 5 PM टू 8 PM। ऑर्डर एनी टू एंट्रीज एंड रिसीव अ कॉम्प्लीमेंट्री एपेटाइजर। विजिट तंदूरी फ्लेम्स डॉट कॉम फॉर मोर डिटेल्स। Taking you towards the next track, a very beautiful number from Kareena's film.

So here was this beautiful track, मुझसे दोस्ती करोगे का था ये गाना. अगले गाने की तरफ आपको लेकर के चलेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें, क्या बताएं, रोज ही बता रहे हैं लेकिन फिर भी बता देते हैं यार, अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक. सोनू निगम रेवोल्यूशन इज हियर, द वन एंड ओनली सोनू निगम लाइव इन कॉन्सर्ट. एक्सपीरियंस रेवोल्यूशन सैटरडे सेप्टेम्बर 26th एंड at 8:30 p.m. at the Credit Union of Texas Event Center in Allen. Your favorite songs, that iconic voice, all live. Tickets available at Ticketmaster. For more information, call 855-360-SHOWS. I repeat, that's 855-360-SHOWS. Revolution Sonu Nigam Live. Exclusive media partner hai aapka pyara Funasia. तो चलिए अगले गाने की तरफ लेकर के चल रहे हैं. एक और मजेदार सा गाना लेकर के आ रहे हैं करीना कपूर की फिल्म से.

0: दिन टूटा।
1: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
2: कौन सा?
1: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
2: अरे सारे तो सेम है।
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
2: ओ हाँ, ये तो अलग है।
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
4: It's true, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
5: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
6: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
5: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
6: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
5: सच में सब संभालेंगे?
6: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड Basera Grand only.
3: Call Hari Basera on 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
7: अगर किसी चीज को दिल से चाहो
8: तो पहले चेक कर लो उस पे डील है या नहीं।
9: डील कहाँ?
8: सिंपल, पास्या पे। इंट्रोड्यूसिंग पास्या, डिस्कवर एक्साइटिंग डील्स एंड ऑफर्स एट रेस्टोरेंट्स नियर यू राइट नाउ। ओपन पास्या, सी व्हाट्स अराउंड यू, फाइंड द डील एंड ग्रैब इट बिफोर इट्स गॉन।
3: डाउनलोड पास्या, दैट्स PAASYA टुडे, बिकॉज डील्स दूर नहीं, पास है। आर यू ट्राइंग टू प्रोटेक्ट योर बिजनेस, रिटेन टॉप टैलेंट एंड प्लान फॉर फ्यूचर सक्सेशन all at the same time? An executive retention strategy using life insurance may help address multiple business goals, including key person protection, employee retention incentives, and future buyout planning. To explore business life insurance strategies, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com, your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms, and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Business planning strategy should be reviewed with qualified legal and tax professionals. Not legal, tax or investment advice.
10: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
11: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स, और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो, विजिट signaturecuisine.net. सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
12: Hi, this is Madhavan, and you're listening to me on my official radio station, Fun Asia Radio.

वेलकम बैक आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को फन एशिया 104.9 एफएम पर. और गपशप गली में कुछ प्यारे खूबसूरत गानों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा. कॉल करिए, अपनी फरमाइशें दीजिए. स्टूडियो का नंबर है 972-235-5555.

Fun Pizza Kitchen has launched a brand new Mexican-inspired pizza lineup. And these aren't just pizzas. They're full-on flavor fiesta. From fresh fiesta veggie to fiery Polo Loco and the seafood-packed Senor Camarón. Every bite is bold, exciting and made to impress. तो भाई सुन के मन कर गया ना खाने के लिए तो जाइए फन पिज़्ज़ा किचन और इनका नया ऑब्सेशन खुद ही ट्राई करिए नए फ्लेवर्स नया ऑब्सेशन एंड ज़्यादा जानकारी के लिए आप funpizza.com पे जा सकते हैं और अगर मन कर रहा है ना खाने का तो एक सवाल का जवाब दीजिए हम आपको $10 का गिफ्ट कार्ड देंगे और फिर आप जा कर के फन पिज़्ज़ा किचन पे पिज्जा एंजॉय कर सकते हैं तो चलिए जल्दी से सवाल पूछ लेते हैं एक प्यारा सा गाना लेकर के आ रही हूँ करीना की ही फिल्म से है ये बस आपको बताना है फिल्म का नाम स्टूडियो के नंबर पे कॉल करना है और बताना है फिल्म का नाम $10 का गिफ्ट कार्ड होगा आपका स्टूडियो का नंबर है 972-235-5555

सो हियर वॉज दिस ब्यूटिफुल ट्रैक फ्रॉम लाल सिंह चड्डा, और हमें हमारे आज के विनर भी मिल गए हैं, तो जोरदार तालियां हो जाए श्रीकांत जी के लिए। So you can collect your gift card from Fun Pizza Kitchen Frisco location और enjoy करिए इनका amazing pizza collection। तो चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं, कुछ 15 मिनट और बचे हैं मेरे पास, इसके बाद यहाँ पर होंगी किरण जी जो बहुत ही प्यारा शो लेकर के आती हैं, आप उनको सुन सकते हैं। फिलहाल अगला गाना एक और ही बहुत ही फेवरेट है मेरा, एक दौर में वन ऑफ द फेवरेट हुआ करता था, एंड दिस सॉन्ग हैज़ बीन रिक्वेस्टेड बाय पंकज।

था ना मजेदार सा गाना ये करीना की फिल्म से, ऐसे ही कुछ प्यारे खूबसूरत गाने और बचे हैं जो प्ले करने हैं मुझे, एंड इनकी सारी की फरमाइश आई है हमारे लिसनर्स की तरफ से। मैं हर बार कहती हूँ जब आप लोग कॉल करते हैं और आपकी फरमाइशें आती हैं तो हमारा दिन और भी अच्छा हो जाता है, बिकॉज आप हमारे शो में चार चांद लगा देते हो। आपकी होस्ट आयुषी आपके साथ कुछ देर और है, ठीक 1 बजे यहाँ पे किरण जी होंगी जो बहुत ही मज़ेदार और खूबसूरत सा शो लेकर के आएंगी आपके लिए, सुनहरी किरण। तो चलिए अगले गाने की तरफ जल्दी से लेकर के चलते हैं आपको।

साइनिंग ऑफ फॉर द डे एंड यू विल हैव आरजे किरण नाउ. आज के लिए विदा दीजिए, कल फिर मिलेंगे. कल का टाइम बता नहीं सकती, पर वापस जरूर आऊंगी इसी समय और मिलूंगी आपसे सुबह 10 से लेकर के 1 के बीच में.

0: तारा। अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
1: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से स्ट्रेस।
2: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
1: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
2: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
1: ये क्या होता?
2: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
3: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
0: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 doors डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन।
4: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
5: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
6: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
7: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
6: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
8: हेलो, वीकेंड लंच इमरजेंसी हेल्पलाइन, हाउ मे आई हेल्प यू?
9: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवन्स आस्किंग लंच में क्या है?
8: फिकर नॉट, वी हैव द perfect solution.
0: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25+ dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
10: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
0: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
11: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get coasted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
12: When the unexpected becomes inevitable, the real story begins.
13: This one ki kali shakti. और अगर कोई रात को वन में प्रवेश करता है तो उसकी लाश भी नहीं मिलती।
14: गेट रेडी फॉर अ ब्रांड न्यू एक्शन पैक्ड एक्सपीरियंस फुल ऑफ इमोशन एंड सस्पेंस।
15: एक तरफ है वन देवी और एक तरफ है विकास।
14: द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट,
16: अ हिंदी मिथोलॉजिकल फोक थ्रिलर डायरेक्टेड बाय अरुणव कुमार एंड दीपक कुमार मिश्रा। सिजलिंग द बिग स्क्रीन फॉर द फर्स्ट टाइम टुगेदर, सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया।
14: On 25th September in cinemas near you.

A very, very good afternoon to the listeners of 104.9 FM Fun Asia Radio. Sun rahe hain aap. Main hoon Kiran aapke saath aur 972-235-5555 ke through. Aap bhi hain mere saath. Acha ji, वैसे आप मुझे सुनते हैं every day, you know, Monday to Friday, 2:30 to 5 तक मैं आपके साथ मौजूद होती हूँ. लेकिन आज is that happy Monday, जहाँ मैं आपके साथ 1 से मौजूद रहूँगी. यानी कि I will be here with you from 1 till 5 और 5 तक का ये सफर होने वाला है बहुत ही ज्यादा रंगीन, बहुत ही ज्यादा म्यूजिकल और खूबसूरत सुरों और गानों से भरा. वो तो होता ही है. और साथ ही साथ करेंगे कुछ बातें और 3 से 2:30 आगे आपके लिए लेकर आऊंगी आपका फरमाइशी प्रोग्राम पसंद आपकी आपके मनपसंद रेडियो स्टेशन पे. मंडेज आर कंप्लीटली डेडिकेटेड टू यू. बट ये जो 1.5 घंटा मैं आपके साथ हूँ 2:30 तक, दिस में हम करेंगे कुछ मजे मजे की बातें, कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जिंदगी से जुड़ी हुई कुछ बातें और साथ ही साथ गाने. अच्छा, ये आधा घंटा जो शुरू का हम करेंगे, आई विल प्ले सम ब्यूटिफुल रीमिक्सेस फॉर यू. सो इफ यू हैव अ रीमिक्स रिक्वेस्ट और यू हैव अ रीमिक्स रिकमेंडेशन, ये मैं बोलूंगी जी रिक्वेस्ट नहीं, रिकमेंडेशन दीजिए, मैं उसको फाइंड आउट करूंगी एंड आई विल, इफ आई कैन एड इट, आई विल प्ले इट इन द ग्रुप. सो फोन कॉल्स आती रहनी चाहिए आपकी. बहुत बहुत शुक्रिया. 972-235-5555. रिकमेंड अ गुड रीमिक्स टू मी एंड आई एम गोना प्ले इट. दिस नेक्स्ट 30 to 40 मिनट्स वी आर गोइंग टू प्ले रीमिक्सेस.

जी हाँ, सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल, रीमिक्सेस का ये सिलसिला मैंने शुरू कर दिया है। कुछ खूबसूरत रीमिक्सेस आपके लिए प्ले करूंगी। अच्छा, कुछ रीमिक्सेस होते हैं वो जरा कानों में बहुत ज्यादा अच्छे नहीं लगते, परेशान भी कर रहे होते हैं कि यार मतलब क्या जरूरत थी इस रीमिक्स को बनाने की। लेकिन कुछ रीमिक्सेस वाकई बहुत प्यारे होते हैं, जैसा कि आप ये रीमिक्स सुन रहे थे जो अभी मैंने आपके लिए प्ले किया। तो ये एश किंग की आवाज में था, और इसी तरह के कुछ प्यारे प्यारे रीमिक्सेस आपके लिए मैंने लाइन अप कर दिए हैं, जो कि बस सिलसिला इन रिमिक्सेस के प्ले करने का है जारी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, अगर आप अपने ख्वाबों का घर खरीदना चाहते हैं तो फिर ड्रीम होम मॉर्गेज इज द प्लेस वेयर यू आर गोइंग टू कनेक्ट, बिकॉज 1998 से ड्रीम होम मॉर्गेज हेल्प कर रहे हैं फैमिलीज को नेशन वाइड अपने बेहतरीन लोन लेने के लिए, बेहतरीन घर खरीदने के लिए। पर्सनलाइज मॉर्गेज सोल्यूशन आपके लिए प्रोवाइड करते हैं, चाहे आप पहली बार घर खरीद रहे हो, आप अपग्रेड कर रहे हो, आपको रीफाइनेंस करानी हो, इवन आपकी कमर्शियल needs home, to Dream Home Mortgages here to help you. Give them a call 972-245-5626 ya phir dreamhomemortgage.com. This is where you need to log on. We are in special remix segment. Agar aapki koi recommendation hai to 972-235-5555 is the number.

This part of our show is proudly brought to you by AG Fintechs, one of the fastest growing tax and accounting firms in the USG. Offer karte hain bahut sare solutions finances ke, jaise ke trusted tax, accounting, payroll, bookkeeping, as well as business advisory services. So, chahe aapka naya business aap khol rahe ho, ya phir aapka established business ho, individual ho aap, ya group ke saath kaam kar rahe ho, anything and everything, AG Fintechs has a great advice for you waiting. All you have to do is give them a call. 469-942-9888. 469-942-9888. AG Fintechs ka number hai. Unhe zarur call kijiye. Ya phir agfintechs.com. That is FINTAX. agfintechs.com. Pe log on kijiye to find out more about what they have to offer you. अच्छा कुछ पुराने गानों का, जैसे पुराने गाने तो नहीं मैं आपके लिए प्ले कर रही, रीमिक्सेस प्ले कर रही हूँ उनके, जो कि अभी हमारे लेटली रिलीज होते हैं, कुछ फिल्मों में आते हैं, कुछ प्राइवेट एल्बम्स में आते हैं. लेकिन अगर हम कभी सोचें कि अगर वक्त को पीछे ले जाने का एक बटन होता तो आप क्या करते? क्या आप अपना बचपन दोबारा जीना चाहते, या फिर स्कूल के वो दिन, वो सुनहरी यादें स्कूल की, या फिर कॉलेज की वो केयर फ्री लाइफ जब सिर्फ इंजॉयमेंट, पढ़ाई तो होती ही थी बट उसके बाद सिर्फ पार्टी होती थी, या फिर पहली बार का वो मोमेंट व्हेन यू स्टार्टेड फीलिंग दोज ब्यूटीफुल फीलिंग्स फॉर समवन, या फिर किसी अपने के साथ गुजारा हुआ कोई ऐसा दिन, कोई ऐसा पल, कोई ऐसा लम्हा जिसने आपकी ज़िंदगी को या आपकी पर्सनैलिटी को हमेशा के लिए बदल दिया. तो आप मुझे बताइए 9722355555. अगर मिल जाए आपको कोई ऐसा दिन या कोई ऐसा मौका वापस जाने का, तो आप कहाँ जाना चाहेंगे? I would love to hear that. May I guess, agar main apne se shuru karun, to maybe the school life. That is one memory that I can never forget. Especially wo jo aapka 9th, 10th grade ka time hota tha. Because us zamane mein, yahan pe to jaise high school hote hain, 11th, 12th is considered in the school. Hamara to 11th, 12th alag hota tha. 9th aur 10th ke baad school khatam ho jata. To 10th mein hum senior hua karte the. Yahan pe 12th mein senior hote hain bache. To wo 9th aur 10th ka wo jo junior senior ka year tha, that was one of the most beautiful memories I have.

बात हो रही है कुछ पुरानी यादों, कुछ पुरानी बातों की, और रीमिक्सेस से हम कर रहे हैं उसको कनेक्ट। तो आगे बढ़ते हुए जी, अभी हम बात कर रहे थे कि ऐसी कौन सी याद है जो आप अपनी जिंदगी में, या ऐसा कौन सा दिन है, ऐसा कौन सा पल है जो दोबारा दिन जीना चाहेंगे। आई एम श्योर आपने जरूर इसके बारे में सोचा होगा। हम अक्सर ये कहते हैं कि काश वो वक्त दोबारा आ जाए, लेकिन वक्त तो कभी वापस किसी के लिए भी नहीं आया, ना मेरे लिए ना आपके लिए, और शायद इसलिए यादें इतनी खूबसूरत होती हैं और यादों पे इतने प्यारे प्यारे गाने बनते हैं, और उन्हीं यादों, बातों और खूबसूरत लम्हों को आज हम अगले एक घंटे और इसके बारे में बात करेंगे। आपकी कोई याद है, कोई मेमोरी है जो आप शेयर करना चाहते हैं, 9722355555 है स्टूडियो का नंबर।

मैं इसी का इंतजार कर रही थी कि आप में से कौन मुझे फोन करेगा और बताएगा कि बेहतरीन बचपन की याद, गुजरे हुए जमाने की याद इज नाना नानी का घर या मामू मामी का घर। ये वो घर, वो मेमोरीज जहाँ हमारे पेरेंट, हमारी अम्मियाँ हमें खासतौर पे मदर्स लेके जाया करती थी और उन्हीं उन्हीं खूबसूरत छुट्टियों के दिनों में हमारी पर्सनालिटीज़ शेप हो रही होती थी, हमारे दिलों में रिश्तेदारियों के साथ मोहब्बत, जब हम अपने प्यारों को हमसे प्यार करते देखते थे, हमारे लिए हमारे नाज नखरे उठाते देखते थे जब हम छोटे बच्चे होते थे। दैट इज़ सच अ ब्यूटिफुल मेमोरी। एंड पूनम, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग एंड शेयरिंग अ ब्यूटिफुल मेमोरी ऑफ योर लाइफ विद मी, इट रियली मैटर्स अ लॉट। सो पूनम के 5 मामा जी थे और उनके घर जाना, उन मेमोरीज को जो है वो मेमोरीज आज तक ना उनके जहन से निकली है और ना ननियाल के घर जाना मेरे जहन से निकला। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग मेरे साथ और पूनम के साथ इस बात पे अग्री करते हैं। गुजरी हुई यादें, पुरानी बातें, कुछ ऐसे लम्हे, कुछ ऐसे पल जिन्होंने हमारी जिंदगी को दिया वो मीनिंग, जो आज तक हम जी रहे हैं, हमारी पर्सनैलिटीज उस हिसाब से शेप हुई, उन्हीं के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। 2:30 बजे तक ये बातों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी आपके लिए एक गिव अवे भी है मेरे पास। इस गाने के साथ हम बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आकर We are going to continue because I got a few calls कि जी बड़ा मजा आ रहा है remixes सुन के, अच्छे remixes, that is not the bad ones। तो अच्छे remixes कोशिश कर रही हूँ आपके लिए, अच्छे अच्छे remixes play करूँ so that we can enjoy the old songs with a modern vibe right here on Sunehri Kiran।

0: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
1: Call 857-891-8942 today.
2: Dad, property papers kahan hai?
3: Laptop mein.
2: Investment?
3: Google Drive.
2: Insurance? Passwords?
3: Beta, don't worry. Mujhe sab pata hai.
2: Dad, wahi toh problem hai. Sirf aapko pata hai.
1: Your family shouldn't have to search for answers when you're not there to give them.
4: Hi, this is Deepthi Verma with NRI Wealth. With proper estate planning, protect what you have built and give your family clarity and control.
1: Call 669-243-5799. That's 669-243-5799. Or visit nriwealth.com for a free 15-minute consultation. NRI Wealth. Don't leave a mess. Leave a plan.
5: Paneer Manchurian ka naam to suna hoga. But chili paneer bao, kahani mein twist.
6: Chicken tikka, purani mohabbat. But burrata chicken tikka, new love.
5: And pistachio lamb chops.
6: Full on flavor ka fusion.
7: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
8: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer?
9: उमर ख्वाजा।
10: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
11: एक और लड्डू ले लो।
12: थोड़ी और बिरयानी।
11: अरे अमरीका जाके थोड़ी मिलेगा।
13: अब सिर्फ सूटकेसेस ही नहीं, वेट, कोलेस्ट्रॉल और शुगर भी एक्स्ट्रा बैगेज बनके साथ आ गए।
14: इंडिया ट्रिप के बाद या कभी भी अपनी हेल्थ को गेस वर्क पर मत छोड़िए। स्केड्यूल योर एनुअल हेल्थ चेकअप एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अलोंग विद ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल एंड वेट चेक्स, दे आल्सो ऑफर डिप्रेशन एंड एंग्जायटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ असेसमेंट, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग एंड मेनी अदर प्रिवेंटिव हेल्थ स्क्रीनिंग्स। कॉल और टेक्स्ट 214-666-6259। पैशन Health Primary Care.
15: Bindas bolo, bolo bolo bolo, bindas bolo.
16: जब गाना बोले बिंदास तो शाम भी होगी बिंदास. Join Banda Bindas, Marvin Das Monday से Thursday from 5 PM to 7 PM for music, musti or full on entertainment. Powered by Texas Star Rehab and Performance Center or Himalayan Bazaar. सिर्फ Phanisha Radio पर.
17: Hi, this is Shraddha Pandit and you're tuned into Phanisha Radio.
18: डालस की धड़कन 104.9 FM फनेजिया रेडियो।

0: All right, सुन रहे थे आप ये खूबसूरत रीमिक्स का सेगमेंट आपके साथ चल रहा है. कुछ पुरानी बातें, कुछ गुजरे हुए दिनों की गुजरी हुई ऐसी बातें जिन्होंने हमारी जिंदगी को, हमारे दिलो दिमाग को आज तक अपने काबू में लिया हुआ है, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं. आपकी फोन कॉल्स ले रही हूँ. अभी आपको बताती हूँ एक बहुत ही प्यारी फोन कॉल जो हमें आई नीति की तरफ से. बट उससे पहले इट इज टाइम नाउ टू कनेक्ट यू विद आवर उरा डेट रिलीफ सेगमेंट. हमारे साथ मौजूद हैं उरा डेट रिलीफ के अमन जी, जो हमें बताएंगे कि उरा हमें कैसे हेल्प कर सकता है इन मेकिंग द राइट चॉइसेस, स्पेशली द राइट डेट चॉइसेस. लेट्स वेलकम हिम ऑन द एयरवेव्स ऑफ फाइनेंशिया. गुड आफ्टरनून अमन जी, हाउ आर यू डूइंग?
1: गुड आफ्टरनून फाइनेंशिया सुनने वाले सभी
2: को उरा और अमन की तरफ से नमस्कार. सो दोस्तों, अगेन महीना अब तो मैं कहते कहते खत्म होने के कागार पे आ गया है. और इस महीने की बीच में हम सब ने बहुत सारी गलतियां भी की होंगी, लेकिन बहुत सारी कॉल्स आई हमें फाइनेंशियल सुनने वालों की कि हमारा डेट सेटलमेंट करा दीजिए. तो अगर आप भी उनमें से हैं कि जिन्होंने अभी तक मिनिमम पेमेंट भरना बंद नहीं किया है, तो फिर आप देख लीजिए, अगले महीने आप मिनिमम पेमेंट क्रेडिट कार्ड की करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उससे आपका क्रेडिट कार्ड उतरता नहीं है, सिर्फ टाइम पास होता है. और अगर आप परेशान हैं कि क्रेडिट कार्ड है उतर नहीं रहा है, क्रेडिट कार्ड कोई भी हो सकता है, स्टोर का, बिजनेस का, या फिर आपके पर्सनल क्रेडिट कार्ड, कोई भी क्रेडिट कार्ड की अगर आप पेमेंट कर करके तंग आ गए हैं, लेकिन हर महीने देखते हैं कि अरे पिछले महीने 100 दिया था, अब फिर उतना ही डेट हो गया, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कर्जा आधे से ज्यादा माफ हो जाए, तो कॉल उरा. उरा आपके सारे क्रेडिट कार्ड की एक पेमेंट बना देगा, आधा कर्जा माफ हो जाएगा जो आपको नहीं देना है. ये कोई बैंकरप्सी भी नहीं है, सिंपल स्ट्रेट सेटलमेंट है, और जो आधा बचेगा उसकी आसान से किस्तें बन जाएंगी. ऑन द टॉप ऑफ दैट, क्रेडिट कार्ड के साथ आपका पर्सनल लोन भी आधा माफ करवाया जा सकता है अगर आप दे रहे हैं मिनिमम पेमेंट, या फिर आपकी गाड़ी जो टोटल हो गई है एक्सीडेंट की वजह से या किसी मैकेनिकल फॉल्ट की वजह से टोटल हो गई है, लेकिन इंश्योरेंस ने पूरा क्लेम नहीं दिया या 50% दिया, जो बाकी बचा उसको नेगोशिएट करके माफ करवा सकते हैं. या गाड़ी रीपोजेस हो गई है, बहुत सारे ट्रक ड्राइवर्स की गाड़ी, ट्रेलर्स, कारें, ट्रक जो रीपोजेस हो जाते हैं, उसको भी आप माफ करवा सकते हैं. सिंपली कॉल कीजिए उरा को 1-888-888-9914, 1-888-888-9914, या फिर आप मुझे सीधी बात करना चाहते हैं तो कॉल मी 916-776-3555, 916-776-3555, अगेन 916-776-3555, और हमारी वेबसाइट है www.ura.org.
0: थैंक यू सो मच अमन जी फॉर कनेक्टिंग विद अस दिस आफ्टरनून. इट इज ऑलवेज अ प्लेजर. वी विल टॉक टू यू नेक्स्ट टाइम.
1: थैंक यू.
0: यू हैव अ गुड वन.

0: जी हाँ, कभी अलविदा ना कहना, ये तो कुछ ऐसी यादें हैं, ऐसी बातें हैं जिन्हें मैं और आप कभी अलविदा नहीं कहना चाहते। वैसे वक्त आगे निकल जाता है और अलविदा कहे बगैर ही चीज़ों को टाटा बाय बाय कर देते हैं हम लोग, लेकिन हमारे दिलो दिमाग से वो यादें कभी नहीं निकलती। सो हम आज के शो में कुछ ऐसी ही बातें कर रहे हैं, जिंदगी की कुछ बातों, कुछ ऐसे लम्हे जो इन्होंने हमारी जिंदगियों को बनाया, हमारी जिंदगियों को शेप किया। और लाइफ में हम अक्सर बड़े बड़े मोमेंट्स को याद रखते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि जिंदगी जो है वो छोटे छोटे लम्हों से बनाई जाती है। बड़े बड़े मोमेंट्स तो आके मतलब दे कम, वी सेलिब्रेट एंड वी मूव ऑन, लेकिन वो छोटी छोटी बातें जो हमारे दिल में, कहीं किसी की बोली हुई अच्छी बात और किसी की बोली हुई सख्त बात, दोनों ही याद रह जाती हैं। बल्कि कभी कभी मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी की बोली हुई सख्त बात, दिल दुखाया हुआ एक जुमला हमेशा किसी इंसान के साथ रहता है। इसीलिए अपनी जबान से मीठी बात कीजिए, मीठा रखिए चीज़ों को, ताकि किसी का दिल ना दुखे। यू डोंट रियली वॉन्ट टू हर्ट एनी वन। अच्छा जी, इसी थॉट के साथ मुझे कॉलर आ रहे हैं तो हम उन्हें लाइव ले लेते हैं। फनेशिया रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर, व्हाट इज योर नेम?
1: हाय, माय नेम इज प्रिया।
0: हाय प्रिया, बताइए क्या बताना चाहती हैं?
1: आपने मेमोरीज की बात बोली, छोटी छोटी बातें जो आप बोल रहे थे, दैट इज वेरी ट्रू। छोटे छोटे लम्हों से ही पूरा जीवन बन जाता है या बीत जाता है। सो इसी चीज पे मैं एक शेयर करना चाहूंगी। सो जब हम इंडिया में थे तो हम रोज सुबह, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ, हम रोज सुबह चाय साथ में पिया करते थे। एंड वी यूज टू कॉल इट कि भाई चलो अभी एजीएम लगाने का टाइम हो गया। एंड वो चाय पीना साथ में इतना ज्यादा अच्छा या इतना अच्छा टाइम था कि हम बात करते करते, कल मम्मा मेरे साथ ऐसा हो गया, मम्मा वॉज अ टीचर, तो वो अपने स्कूल का शेयर करती थी, मेरे हस्बैंड अपने ऑफिस का शेयर करते थे। एंड एवरी डे हम उठ के ये बोलते थे, अरे अरे एजीएम बहुत ज्यादा ड्रैग हो गई है, चलो चलो लेट हो गई, चलो चलो लेट हो गई।
0: राइट राइट राइट।
1: वो एक छोटा पल था जो वी यूज टू लुक फॉरवर्ड कि अरे आज क्या बात हुई या आज क्या मजा आया। सो आई थिंक आई मिस ऑल दोस थिंग्स हियर एंड वो टाइम, आई विश जल्दी वापस आए।
0: एब्सोल्युटली। और वो आपका बॉन्डिंग टाइम था, मे बी वो मेमोरीज तो आगे बढ़ जाती है, मगर वो जो बॉन्ड उस जमाने में एस्टेब्लिश हुआ वो कभी नहीं खत्म होता। राइट,
1: एग्जैक्टली, यस यस, आई वुड से यस, यू आर राइट।
0: यस, परफेक्ट। प्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी फोन कॉल का, थैंक यू सो मच। एंजॉय कीजिए, आई हैव सम ब्यूटीफुल रीमिक्सेस लाइंड अप फॉर यू।
1: थैंक यू।
0: ऑलराइट, आप लोग पार्टिसिपेट कर रही हैं जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये वो बातें हैं जो हमारी, जैसे मैं

बार बार कह रही हूँ कि हमारी जिंदगी के वो मोमेंट्स हैं जो शायद हम कभी कभी हमारे सबकॉन्शियस में वापस भी चले जाते हैं, लेकिन कभी आप सोचिए तो देखिए कितनी पावर से ये मोमेंट्स आपके दिलो दिमाग में वापस आते हैं जब आप सोचते हैं. आपके जहन में क्या लम्हा आ रहा है, अभी एक गिव अवे लेके आ रही हूँ, बने रहिए.

उफ, कुछ गाने इतने खूबसूरत होते हैं. ये गाना तो चाहे आप ओरिजिनल सुन लो, चाहे आप इसका रीमिक्स सुन लो, और बात ही इस गाने की जो शायरी है, इस गाने का जो इजहार है, ख्याल है, क्या यही प्यार है, यही प्यार है, बस सिंपल सी बात है, ख़त्म हो गई कहानी. तो आप सुन रहे हैं रीमिक्स स्पेशल, और रीमिक्स स्पेशल के साथ मैं आपके लिए लाई हूँ पुरानी यादें, वो बातें जो आपके और मेरे दिल को बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं. कई बार हम उनको अपनी ज़िंदगी के आम रोज़मर्रा के जो हमारे मामलात होते हैं उनमें हम भूल जाते हैं कुछ पुरानी बातों को, जैसे कि नानी का वो घर, या फिर यू नो ददियाल का वो प्यार, या फिर अपने बहन भाइयों के साथ गुजारे वो प्यारे प्यारे लम्हे जो हमने बचपन में गुजारे थे. ऐसा लगता था कि ये साथ कभी नहीं छूटेगा, सदा सदा के लिए ये साथ साथ रहेगा. लेकिन टाइम बदलता है जी, शादियाँ हो जाती हैं, अपने अपने घरों को चले जाते हैं सारे, और फिर जो रोज़ की मुलाकातें होती हैं वो दिनों में शिफ्ट हो जाती हैं, फिर हफ्तों में बनती हैं, फिर महीनों में बनती हैं, और हम जो इतना दूर बैठे हैं, हम तो शायद साल में एक दफ़ा ही जाके मुलाकात करते हैं, और जब जाते हैं वापस तो कई बार ऐसा महसूस होता है कि दुनिया बहुत आगे निकल गई है, हम बहुत पीछे रह गए, हमारी यादें बहुत, मतलब यू नो हम वहीं स्टक हैं उन्हीं यादों में शायद, लेकिन दुनिया बहुत आगे कभी कभी निकल जाती है. सो द रियलिटीज ऑफ लाइफ, कभी हैप्पी और कभी सैड, दैट इज हाउ लाइफ इज ऑल अबाउट. हम एक कॉलर कॉल कर रहे हैं, लेट्स वेलकम. जी मैं अभी आपका अभी कॉल लेती हूँ जी, गिव मी वन मिनट, अभी लेते हैं आपकी कॉल. अच्छा जी, अब जो है वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक गिव अवे, और गिव अवे आया है चंडीगढ़ बाइट्स की तरफ से. सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि चूंकि लंच अभी चल रहा है, तो लंच स्पेशल उनका बहुत ही स्पेशल थाली लगाते हैं मंडे थ्रू फ्राइडे. एक्साइटिंग न्यू डिशेज डेली रोटेट होती हैं, तो आप बोर बिल्कुल नहीं होंगे अगर आप डेली भी जाके खाइए. तो ज़रूर उनका चेकआउट कीजिए लंच स्पेशल, एज वेल एज डू चेकआउट देयर मेन्यू फॉर अमेजिंग amazing deals as well as amazing food. चाहे डिनर हो, लंच हो, किसी भी वक्त आपने जाना हो, chandigarhbites.com वो वेबसाइट है जहां आप लॉग ऑन कर सकते हैं. दे आर लोकेटेड ऑफ मैकडरमॉट ड्राइव इन एलन. और ये गिव अवे आपके पास, यू हैव चांस ऑफ विनिंग $10 ऑफ योर डाइनिंग बिल ऑफ $50 और मोर. तो $10 आप जाइएगा, $50 का आपका बिल बनेगा. इफ़ यू आर अ विनर तो यू विल गेट $10 ऑफ. और बात सिर्फ बहुत सिंपल है, आप मुझे कॉल कीजिए और मेरे साथ शेयर कीजिए कोई ऐसी बात, कोई ऐसी याद जो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बहुत ज़्यादा आपको याद आती है. जैसे कि क्या बताऊँ आपको, सोचिए कि कोई ऐसा दिन जो यू नो आपके लिए बहुत मायने रखता है. जैसे अभी हमें एक कॉलर ने कहा कि हस्बैंड और सास के साथ पी हुई वो चाय की कप बहुत मायने रखती है. या उससे पहले हम मुझे फ़ोन आया था जी नीति का, उनका कहना था कि मुझे वो दिन बहुत याद आते हैं जब मेरी पूरी फैमिली एक साथ होती थी. मैं छोटी सी होती थी, 8-9 साल की, और पूरी फैमिली साथ होती थी. वो फैमिली, वो बॉन्डिंग मैं मिस करती हूँ. आप क्या मिस करते हैं? 972-235-5555 इज द नंबर टू द स्टूडियो.

जी हाँ, लेकर आई थी आपके लिए गिव अवे चंडीगढ़ बाइक्स इन एलन की तरफ से, लोकेटेड ऑफ मैकडरमॉट ड्राइव इन एलन. एंड आपसे बस बात वही थी कि बताइए कुछ ऐसा मोमेंट, कोई ऐसी बात, और फिर लकी विनर अनाउंस करेंगे. और आज की हमारी लकी विनर हैं रुबीना. रुबीना, कंग्रेचुलेशंस. हमें 2 दिन का टाइम दीजिए आपका नाम और नंबर चंडीगढ़ बाइक्स पहुंचाने के लिए. एंड देन यू विल हैव अबाउट 7 डेज टू गो एंड अवेल योर $10 ऑफ योर डाइन इन बिल ऑफ $50 और मोर. अच्छा, यादें जो हैं वो ऑलमोस्ट हम सब की एक ही जैसी हैं बचपन में बड़े होते. और ख़ास तौर पे रुबीना की एक बहुत ही प्यारी याद, स्पेंडिंग टाइम विद हर सिस्टर्स एंड हर मॉम ऑन संडेज. दे यूज़ टू हैव दैट बिग लॉन्ड्री डे, जब सारे कपड़े धुला करते थे घर के, और फिर स्पेशल खाना, एक स्पेशल डिश बनिया करती थी इनके घर में, वेजिटेबल पुलाव बनती थी. और सारी बहनें और मदर जो हैं वो मिलके पहले कपड़े धुलते थे, वो हैंग होते थे, और कोई पानी ला रहा है, कोई तार लगा रहा है, कोई कपड़े सुखा रहा है, और उसके बाद सारे बैठ के एक साथ खाना खाते थे. ये है वो मेमोरी जो रुबीना ने हमारे साथ शेयर की. एन एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मेमोरी जो कि हम सब की कहीं ना कहीं रेजोनेट करता होगा. ये अगला आधा घंटा मैं और मजीद आपके लिए रीमिक्सेस का सेशन लेके आऊँगी और बात करूँगी आपसे कुछ गुजरे हुए लम्हों की, कुछ ऐसे पलों की जो मेरे और आपकी ज़िंदगी में आज भी उतना ही मैटर करते हैं. जब हम उनके बारे में सोचते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वक्त शायद वहीं जाके फिर से रुक गया है दिलो दिमाग में.

0: और राइट जी, पिछले 13 साल से टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक प्राउडली सर्व कर रहे हैं कम्युनिटी को, और अब दे आर एक्सपैंडिंग विद अ ब्रांड न्यू नेम एंड अ सेकंड फिजिकल लोकेशन व्हिच इज लिनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. लिनॉक्सी मेडिकल ब्रिंग्स प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, इन हाउस लैब टेस्टिंग, एक्सरेज होंगे, सीटी स्कैन्स हैं, कार्डियक डायग्नोस्टिक, हिमालयन मेड स्पा सर्विसेज भी आपको वहीं मिलेंगी. दे आर ओपन 7 days अ वीक, 8 AM टिल 8 PM. सो लिनॉक्सी, वॉक इन anytime.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: यार फेस्टिवल सीजन आ रहा है और मेरी वाइफ ने शॉपिंग लिस्ट भी दे दी है.
4: कितनी लंबी लिस्ट है?
3: बस 2 pages. इंडियन ड्रेसेस, मिठाई, नमकीन और हाँ, एक पूजा मंदिर भी.
4: अरे तो सब कुछ इंडिया से ही मंगवा लो. SFL Worldwide है ना, इंडिया में आपके डोर स्टेप से सामान पिकअप करके यहाँ सीधा आपके घर डिलीवर करते हैं. पूजा मंदिर हो, झूला हो या फर्नीचर, सामान छोटा हो या बड़ा, ओशन फ्रेट के थ्रू सब शिप हो सकता है.
5: दिस फेस्टिव सीजन इंडिया को अपने और करीब लाएं विद SFL Worldwide. शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू द USA एंड वर्ल्ड वाइड. विजिट SFLWorldwide.com.
6: It's the time to clock out. It's the time to catch up.
4: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame. जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू, सिजलिंग फ्लेवर्स और चटपटे एपेटाइजर्स मेक एन ऑर्डिनरी वीकडे फील लाइक अ डिलीशियस सेलिब्रेशन. एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 5 to 8 PM. ऑर्डर एनी 2 entrees एंड गेट 1 appetizer एब्सोल्युटली फ्री. ब्रिंग योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योर एपेटाइट. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
7: अजी सुनते हो?
8: अजी नहीं, एजी सुनते हैं.
9: The OG of tax planning, AG FinTax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Funasia Radio.
10: We need to talk.
11: अब क्या हुआ?
10: Nothing, it's not you.
11: Oh no.
10: It's the distance.
11: Distance? We live 10 minutes apart.
10: Are it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
12: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
13: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
14: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
13: Kya matlab?
14: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
13: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
14: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
13: Ab to karna hi padega, madam.
15: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
16: Dude, life mein kuch aisa karna hai jisme main front page pe rahun.
17: Front page ka to pata nahi, but tera page 3 mein hona meri guarantee hai.
16: Kaise?
17: Page 3 eatery?
16: No, not another restaurant again.
17: Dude, it's page 3. Start with the bar, signature cocktails, classic pours and the food crafted to suit every craving, every appetite.
16: Matlab great food, great drinks and great company, yani ki main.
18: Page 3 Eatery. Eat, sip, gossip, repeat.
12: Have you thought about what would happen if you or a business partner passed away unexpectedly? The death of an owner can create serious challenges for a business, from ownership disputes to cash flow concerns and family financial needs. A properly structured buy-sell agreement funded with life insurance may help provide the funds needed to purchase a deceased owner's share of the business and allow for a smoother transition to the surviving owners. Life insurance can be used with different buy-sell structures, including cross-purchase and entity purchase arrangements. Protect your business, your partners, and your family. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603 to learn more about business continuation planning with life insurance. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms, and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult your attorney and tax advisor regarding buy-sell agreements. Not legal, tax, or investment advice.
7: Hi guys, this is Tiger Shroff. Enjoy Fun Asia Radio.
19: जुड़ जाओ अपनी धरती से देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फनेशिया 104.9 FM।

और अगर आप H1B, F1 या फिर L1 वीज़ा पे हैं या फिर कोई भी और आपका यू नो वीज़ा स्टेटस है एंड यू आर प्लानिंग नॉन इमिग्रेंट वीज़ा स्टेटस एंड यू आर प्लानिंग फॉर अ US परमानेंट रेजिडेंसी पाथ, तो फिर सीमा मेहता, अटर्नी सीमा मेहता इज़ द पर्सन यू नीड टू कॉल. अटर्नी सीमा मेहता एंड आर एक्सपीरियंस टीम स्पेशलाइज करती है एक्सक्लूसिवली इन इमिग्रेशन लॉ, इंक्लूडिंग EB-5 इन्वेस्टर वीज़ाज, फैमिली एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट वीज़ाज, परम लेबर सर्टिफिकेशन भी और US citizenship be. Anything that is concerned with immigrant visa status, immigrant visa questions, answers, anything, give attorney Seema Mehta law offices, drop an email to this email ID and they will get back to you as soon as possible. That email ID is info@seemamehtalawfirm.com. Once again, in email ID note kar lijiye, that is info@seema SEEMA Mehta MEHTA lawfirm.com. अच्छा जी, बात हो रही थी कुछ गुजरे हुए पलों की और जिंदगी में कुछ मोमेंट्स हमारे ऐसे भी होते हैं. अभी तो हमने यादों की बात करी, अब मैं थोड़ा सा फोकस ऐसी उस चीज पे कर रही हूँ कि कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जिनकी वैल्यू का अंदाजा हमें उनके गुजर जाने के बाद समझ में आता है. जब हम यंग होते हैं, जब यू नो जल्दी बड़ा होना चाहते हैं कि यार मतलब कब बड़े होंगे, कब ये पढ़ाई खत्म होगी. मुझे याद है मैं भी बहुत सोचती थी कब ये पढ़ाई खत्म होगी, लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि कभी पढ़ाई खत्म होगी तो कोई और इम्तिहान जिंदगी का शुरू हो जाएगा. इम्तिहान देने कभी खत्म नहीं हो सकते. और जब हम ये सोचते थे या कहते थे कि काश यू नो जल्दी से बड़े हो जाएं, लेकिन अब कहीं दिल में ख्वाहिश सी आती है कि काश बचपन वापस आ जाए. पेरेंट्स कहते थे फ़ोन रख दो और हम खुद कहते हैं अब काश यू नो पापा थोड़ी देर हमसे बात कर लें. पहले हम पापा को मामा को टाइम नहीं देते थे, अपने दोस्तों में मगन रहते थे, मगर अब उसी वक्त का इंतज़ार करते हैं कि यू नो थोड़ा टाइम मिले तो उनसे बात कर लें. और वो वक्त, वो प्रायोरिटीज़ जो हैं, जो तब हमारी थी, वो अब चेंज हो गई हैं. अब हमारी लाइफ आगे बढ़ गई, अब आपके बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, अब यू नो ज़िंदगी एक नए फेज़ पर गुजर गई. अब तो फ़ोन्स, खैर जब हम बड़े हो रहे थे तो फ़ोन्स भी हाथों में नहीं थे, लेकिन फिर भी हम सारा दिन वो फ़ोन पकड़े अपने दोस्तों से बातें ज़रूर करते रहते थे. स्मार्टफोन नहीं थे तो क्या हुआ, वो घंटी वाले फ़ोन थे ना वो, मतलब. और मुझे याद है कि मेरी मामा मुझे कहा करती थी कि भाई अभी तो तुम स्कूल से आई हो, फिर लेके फोन पे बैठ गई हो, कैसी कौन सी बातें हैं तुम लड़कियों की जो कभी खत्म नहीं होती. तो अब इसका क्या जवाब दिया जाए, वाकई बातें तो कुछ बहुत सारी होती हैं जो कभी कभी खत्म नहीं होती. वो कौन सी बातें हैं आपकी जो कभी खत्म नहीं होती? इफ यू वांट टू शेयर, गो अहेड.

PMJ Jewels is now in Frisco, and they are bringing over 60 years of jewelry excellence and timeless Indian craftsmanship. Ji haan, PM Jewels aapke liye maujood hain ji. Ab Frisco mein open hain. Aap zaroor visit kijiye unke showroom aur dekhiye what beautiful gold diamond jewelry hai unke paas. Bridal collection aapke liye unhone rakhi hui hai. Any time kind of celebration ho aapki, you will find a piece there that will you will absolutely love. So PM Jewels ko contact kijiye. Visit PM Jewels. They are located in Frisco on Main Street. तो जी इसी के साथ सेगमेंट चल रहा है हमारा कुछ पुरानी यादें कुछ बातें जो हमारी ज़िंदगी का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा हैं. अली आपकी फ़ोन कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया. आपके बचपन की बातें हमारे साथ शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया. बचपन या पुरानी बातें या कुछ गुजरे हुए लम्हे कुछ ऐसा एक तार हमारे दिलों में छेड़ता है जो कि बहुत ज़्यादा मायने रखता है. हम कभी कभी वक्त के वो कहते हैं ना दौड़ में भूल जाते हैं उन चीज़ों के बारे में जो हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं या जिन्होंने हमारी ज़िंदगी हमारी पर्सनालिटी को शेप किया होता है. सो अगर वक्त पीछे चला जाए ये अगर हम इसको लेके आगे चलें तो उन लोगों की जो हमारी ज़िंदगी बदल देते हैं या जिन्होंने हमारी ज़िंदगी को बदल दिया वो कौन लोग हैं. क्या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसे लोग थे. ज़रूरी नहीं कि वो कोई सेलिब्रिटी हो वो कोई फेमस पर्सनालिटी हो. कभी कभी वो एक स्कूल टीचर जिनसे आप इतना इंस्पायर हुए कि आपकी पर्सनालिटी में आपकी ज़िंदगी में उनकी झलक नज़र आने लगी. वो एक दोस्त जिसने आपका हाथ कभी नहीं छोड़ा. वो एक कॉलीग जो आपके लिए एक इंस्पिरेशन बन गया. या वो एक नेबर जो इतना अच्छा था कि आपको आज तक अच्छे नेबर का जब आप सोचते हैं तो उसी का ख्याल आता है कि नेबर हो तो ऐसा हो यानी कि मोहल्लेदार या पड़ोसी जो हो आपके वो ऐसे हो. या वो एक बॉस जिसने आपको तब सहारा दिया या तब थामा जब आप डगमगा रहे थे. ऐसा कोई ज़बरदस्त बॉस या कोई इवन एक स्ट्रेंजर जो कई बार आपके कोई बहुत ही ख़राब मूड हो किसी स्ट्रेंजर ने आपसे प्यार से थैंक यू बोल दिया हो या आपको मुस्कुरा के देख लिया हो वो याद आपके जहन में आ जाती है. एकदम से आपका दिल लिफ्ट अप हो गया हो आपका मूड बेहतर हो गया हो. या आपके घर का कोई अपना आपका स्पाउस आपके सिबलिंग जिन्होंने आपके किसी ऐसे वक्त में या किसी ऐसे वीक मोमेंट में सबसे बड़ा सहारा बन के आए हों. यू नो इस तरह के बहुत सारे लोग हैं हमारी जिंदगियों में. आप सोचिए वो कौन सा एक शख्स है दो शख्स हैं तीन शख्स हैं या बहुत सारे जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले किए हैं. दिस इज़ रीमिक्स स्पेशल गोइंग ऑन विद सुनहरी किरण. और रीमिक्स की बातें हो रही हैं तो प्यारी प्यारी रीमिक्सेस तो आपके लिए चला रही हूँ और कुछ ऐसी बातें जो हमारे दिलों के तार छेड़ रही हैं. आप सबकी फ़ोन कॉल्स का बहुत बहुत शुक्रिया.

अरे जी, दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग रात कली ये ख्वाब है. मुझे ये गाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है. आई डोंट नो व्हाई, आई जस्ट एब्सोल्युटली लव इट. इसका ओरिजिनल वर्जन भी और इसके रीमिक्स वर्जन भी, ये खास तौर पे ये वाला जो मैंने आपके लिए प्ले किया. अच्छा, गानों की बात तो आपके साथ परमानेंट चलती रहती है, और एक बहुत ज़बरदस्त इवेंट के बारे में आपको बताने वाली हूँ जो कि होने वाला है 26 सितंबर, यानी कि इस सैटरडे September 26th, एक्सपीरियंस रेवोल्यूशन, सोनू निगम लाइव इन कॉन्सर्ट. जी हाँ जी, वो आवाज जिसने हमें बहुत सारी मेमोरीज दी, वो आ रही है लाइव हमारे साथ. डालस में परफॉर्म करेंगे. दे आर परफॉर्मिंग एट क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर इन एलन. आपके पसंदीदा गाने, आपकी पसंदीदा आवाज में आपके पसंदीदा सिंगर आपके लिए गाएंगे. जरूर अटेंड कीजिए इस कॉन्सर्ट को. टिकट मास्टर पे आपके सारे टिकट्स अवेलेबल हैं, चेक देम आउट. और इन्फॉर्मेशन अगर आपको मजीद चाहिए इस इवेंट की, तो नंबर एक दे रही हूँ आपको, उस पर कॉल कर लीजिए. आपको कोई ग्रुप टिकट्स के बारे में पूछना है और एनी अदर क्वेश्चन you have, that is 855-360-SHOWS. 855-360-SHOWS is the number where you have to call. SHOW SHOWS is the number that you have to call. Aur aapko batate chalein ji, Fun Asia Network is the exclusive media partner for this event. This is Revolution, Sonu Nigam live in concert.

0: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
1: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: Zindagi ek safar hai suhana, yahan kal kya ho, kisne jana.
1: Life ho ya health, kab kya ho jaye, pata nahi. 13 saal tak Texas Primary Care Clinic ne jeeta aapka trust. Aur ab wahi trusted care, urgent care services ke saath, नए काइजरवे लोकेशन पर लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर अर्जेंट केयर एक्सरे सीटी स्कैन हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा सब कुछ एक ही रूफ के नीचे लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर ओपन 7 डेज अ वीक 8 एएम टू 8 पीएम वॉक इन एनी टाइम 9191 काइजरवे स्वीट 205 फ्रिस्को
3: हो सकता है आपका नेक्स्ट कस्टमर भी आपको ही ढूंढ रहा हो जॉइन पासिया एंड मार्केट योर बिजनेस फॉर फ्री शोकेस योर डील्स एंड गेट डिस्कवर्ड बाय कस्टमर्स नियर बाय पासिया बी वेयर योर कस्टमर्स आर लुकिंग
4: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर
5: अरे मैडम करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या
6: अब करेगा बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन स्टनिंग लहंगास एलिगेंट साड़ीज ब्राइडल ज्वेलरी मेंस एंड किड्स वेयर
7: इतना सब और प्राइस
6: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन अब हर आउटफिट बोलेगा
8: मैं हीरो
9: Breaking news! Home loan ya refinance ab aur bhi aasan. MyFamilyHomeLoan.com deta hai transparent pricing. No hidden fees. No surprises. Aur haan, sabse badi khabar. Unka AI-powered platform. Real-time rates compare karta hai taki aapko mile better deals and faster approvals. 15,000 plus Google reviews. Hazaro families ka bharosa. Visit MyFamilyHomeLoan.com or call 469-734-3338. 469-734-3338. MyFamilyHomeLoan.com is powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
10: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
11: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer. Ab Dallas mein.
10: That magic removal ho, love and relationship issues ho, get trusted solutions with 100% privacy.
11: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn.
10: Samasya ka pakka samadhan.
11: Astrologer Ishwar. Call now 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
12: Family ko chahiye North Indian, friends ko South Indian. Ab jaye to jaye kahan?
10: Simple, Basera Grand. One destination, double the flavor.
13: Matlab crispy golden dosa?
10: Yes, rich North Indian favorites, flavorful loaded biryanis aur ek delicious buffet jahan choices hi choices hain.
13: Wow, great food, full variety and everyone's happy.
12: Family dinner ho ya friends ke saath celebration. Make every meal grand at Basera Grand. Basera Grand. Come hungry, leave happy. Together.
14: When the unexpected becomes inevitable, the real story begins.
15: Is van ki kali shakti aur agar koi raat ko van mein pravesh karta hai, तो उसकी लाश भी नहीं मिलती।
14: Get ready for a brand new action-packed experience, full of emotion and suspense.
16: एक तरफ है वन देवी और एक तरफ है विकास।
14: The One, Force of the Forest,
17: a Hindi mythological folk thriller, directed by Arunab Kumar and Deepak Kumar Mishra, sizzling the big screen for the first time together, Siddharth Malhotra and Tamanna Bhatia.
14: On 25th September in cinemas near you.

मोनिका की रिक्वेस्ट पे सुन रहे थे आप ये गाना. आप लोगों की फोन कॉल्स का सिलसिला जारी हो चुका है और आपकी फरमाइशें मैं ले रही हूँ. 90s ऑनवर्ड्स गाने आप मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर कॉल्स. आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताऊं जी कि कोई फाइनेंसिस का आपका सवाल है, कोई आप अपना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करवाना चाहते हैं या फिर रियल एस्टेट के कोई आपकी फाइनेंसिस हैंडल करने हैं, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं, या यू लुकिंग फॉर रिटायरमेंट प्लानिंग, देन माई टाइम इक्विटी लेड बाई CPA Sudhir Pai is the right place for you. Give them a call. Aapka koi bhi sawal hai, there is no harm in calling and discussing and seeing whether they fit your requirements. To 469-702-1272 is number pe call kijiye aur dekhiye. Once again the number is 469-702-1272. mytimeequity.com ye wo website hai jis pe aap visit kar sakte hain to find out more about what they are offering you. अच्छा जी, मेरे पास अगली दो तीन रिक्वेस्ट लाइन अप हैं. एक हमारे पास कॉलर की कॉल आई अभी, जो हमने पूरा ये डेढ़ घंटा मेमोरीज का सेगमेंट किया, यादों का सेगमेंट किया. अनोनमस कॉलर, नाम हम नहीं बताएंगे. और बहुत बहुत शुक्रिया आपकी फ़ोन कॉल का, आपकी मेमोरीज शेयर करने का और ये बताने का कि ज़िंदगी में वाकई कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे बहुत सारी बातें करनी होती हैं और जब वो चले भी जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे मौजूद हैं कहीं आसपास, सुन रहे हैं दिल की बात. ये गाना मैं खास आपके लिए डेडिकेट कर रही हूँ जी. दिस इज़ बस आप सुनिए और आई विश यू

पेज थ्री ईटरी आपके लिए लेकर आए हैं जी फ्लेवर्स दैट आर एब्सोल्युटली पॉपुलर, जैसे मुंबई के फ्लेवर्स, लखनऊ के फ्लेवर्स. पेज थ्री ईटरी हब 121 पे लोकेटेड है इन मिकनी. तो आप आइए और इन्जॉय कीजिए उनकी. अगर आप मतलब जिस भी तरह का आपका खाना खाने का दिल है, जैसे कि आपने स्नैक बाइट्स करने हैं, चाट्स खानी है, या फिर आपको प्रॉपर एंट्रीज हैं कि जैसे तंदूरी डिशेस खानी है, बिरयानी खानी है, उनके और डिशेज हैं, या फिर आपको ड्रिंक्स लेनी है हैंड क्राफ्टेड, या फिर सैंडविचेस खाने हैं, बर्गर्स खाने हैं या रोल्स खाने, मतलब आपकी चॉइस की कोई ना कोई चीज पेज थ्री ईटरी पे मौजूद है. जिस भी तरीके का आपको खाना खा रहा है और एम्बियंस ऐसा कि आप जाइएगा तो कहिएगा वाह क्या बात है, मजा आ गया. गो देयर, विजिट. डिनर हो, लंच हो, आपकी डेट नाइट हो, आपको फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आना हो, पेज थ्री ईटरी इज अ प्लेस दैट यू रियली डोंट वांट टू मिस. एंड बिफोर यू गो देयर, व्हाई डोंट यू गिव अ लुक एट देयर मेन्यू एंड चेक आउट देयर वेबसाइट. दैट वेबसाइट इज page3eatery.com. वंस अगेन, पेज थ्री एज अ नंबर थ्री eatery.com. और शिवानी, थैंक यू आपकी कॉल का और इस गाने को रिक्वेस्ट करने का. दिस इज गोइंग आउट टू यू. कभी नीम नीम, कभी सख्त सख्त.

0: अच्छा जी, लेकर आई हूँ आपके लिए डक टाइम की तरफ से एक अमेजिंग गिव अवे। डक टाइम कर रहे हैं अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट, तो प्रोफेशनल डक क्लीनिंग के लिए जो कि हेल्प करती है टू रिमूव डस्ट एज वेल एज क्लियर क्लॉक्ड वेंट्स, इम्प्रूव करती है एयर फ्लो को, रिड्यूस करती है हिडन फायर हैजर्ड्स को, और साथ ही साथ बहुत सारे और मसले जो हमारे रोजमर्रा के होते हैं वो डक्ट क्लीनिंग से हल हो जाते हैं, जैसे कि सांस में प्रॉब्लम या एलर्जी आपको ज्यादा हो रही है, तो जरूर ध्यान दीजिए उसके ऊपर और डक्ट टाइम को कॉल कीजिए। दैट नंबर इज जीतू पटेल, ये हैं डक्ट टाइम के वो कॉन्टैक्ट पर्सन जिन्हें आपने कॉल करना है 9728772500 पे। नंबर एक बार फिर नोट कीजिए 9728772500। अच्छा, डक्ट टाइम क्योंकि डक्ट टाइम की ये पहली एनिवर्सरी है तो वो आपके लिए, वैसे हम एनिवर्सरी पे तोहफा देते हैं पर वो आपको तोहफा दे रहे हैं, वो दे रहे हैं आपको 50% ऑफ ऑन डक्ट क्लीनिंग फ्रॉम डक्ट टाइम। तो अपनी अपॉइंटमेंट आज ही बुक करिए पहले तो, और अगर आप ये गिव अवे जीत गए तो फिर 50% ऑफ भी आपको मिलेगा। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन, डू पार्टिसिपेट। अच्छा, सवाल क्या है? सवाल देखिए, आपको पता है कि फिल्मी फरमाइश चल रहा है पसंद आपकी, आपके मनपसंद रेडियो स्टेशन पे मैं लेके आ रही हूँ, मंडेज को लेके आती हूँ, लेकिन आज जो है वो आज की प्लेलिस्ट ऑब्वियसली आप ही की बनाई हुई होगी, लेकिन आप बताएंगे कि आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं और उस गाने को सुनने की वजह क्या है। यानी कि आप फरमाइश कर रहे हैं अगर पुरानी जीन्स की, जैसे फर्ज कीजिए मैं पुरानी जीन्स अभी करती हूँ, तो मैंने ये सुना, मुझे पुरानी जीन्स सुन के गाना वाकई कॉलेज का और स्कूल का ज़माना याद आ जाता है, मोहल्ले की वो छत और मेरी, हम लोग मतलब मोहल्ले की वजह, जब हम लड़की सारी फ्रेंड्स जमा हो जाते थे और सारे वहाँ पे खड़े होते थे और इन्जॉय करते थे और चाय चल रही है और सैंडविचेस चल रहे हैं और अम्मियाँ बेचारी खाना पका पका के भेज रही हैं और सारी लड़कियाँ इन्जॉय कर रही हैं। सो पुरानी जीन्स से मुझे ये याद आता है। आप जो फरमाइश कीजिए वो बताइए कि आपकी फरमाइश के साथ वो कौन सी कहानी है जो जुड़ी हुई है, और जीत लीजिए डक टाइम की तरफ से 9722355555 is the number to the studio. You will get 50% off on duct cleaning from Duct Time. Fun Asia Radio, you are live on air. What is your name?
1: So my name is Shweta.
0: Hi Shweta, bataiye.
1: तो मुझे जो गाना याद आ रहा है वो है कयामत से, कयामत का जो गाना है, अकेले है तो क्या गम है, चाहे जो हमारे बस में क्या नहीं, बस एक जरा
0: बिल्कुल
1: हो तेरा।
0: तो मेमोरी बताइए कि क्यों याद आ रहा है आपको।
1: तो ये मेमोरी, ये मैं, ये जब हम पहली बार मैं अपने हस्बैंड से मिली थी, हाँ, तब ये वाला गाना पीछे बज रहा था, तो तब
0: क्या बात है,
1: डेटिंग डेटिंग, तो तब हमारी शादी नहीं हुई थी, वी जस्ट डेटिंग डेटिंग, तो हमें लगा अगर इफ वी कंटिन्यू टू बिकम पार्टनर्स तो ये वाला गाना हमारा थीम सॉन्ग होगा, तो ये वाला गाना मुझे इसलिए बहुत पसंद है।
0: लवली, तो अब जो है आपकी शादी को कितना साल हो गए?
1: तो शादी को कितने, 15-16
0: होने वाले हैं, तो मतलब अकेले हैं, हम से चेंज हो गई है कहानी अब 16 साल से।
1: बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो ये गाना मुझे बहुत पसंद है।
0: लवली श्वेता, सुनते रहिए, अगर आप विनर होंगी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी टू गिव मी अ कॉल बैक टू टेक योर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच। Alright जी, that was a beautiful story shared by Shweta. यही है आपको करना कि अपना गाना बताना है और साथ बतानी है वो कहानी जो उस गाने से related है।

ब्रेक पे जाते हुए आपके लिए लेकर आई थी डक टाइम की तरफ से ये गिव अवे. यू कैन विन 50% ऑफ ऑन डक्ट क्लीनिंग फ्रॉम डक टाइम. और बात आपसे बस यही पूछी थी कि जो गाना आपके जहन में चल रहा है उसके साथ की मेमोरी रिक्वेस्ट भी कीजिए और अपनी मेमोरी भी उसके साथ बचाइए. थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर कॉल्स श्वेता, शिवानी, प्रिया एंड मेनी मोर. अच्छा जी, सबके अपने अपने गाने तो मैंने सारे लाइन अप कर लिए हैं जो जो आप लोगों ने अपनी फरमाइश में मुझे बताया और उनके साथ की मेमोरी शेयर की. तो आज की हमारी जो लकी विनर है वो है प्रिया. प्रिया कंग्रेचुलेशंस, आपने जीत लिया है ये गिव अवे. प्रिया धनजानी, आप हमें दो दिन का टाइम दीजिए आपका नाम और नंबर डक टाइम तक पहुंचाने के लिए. एंड प्लीज लुक आउट फॉर दैट ईमेल और दैट कॉल, दे विल गेट बैक टू यू रिगार्डिंग योर विन. अच्छा जी प्रिया, आप ही से शुरू करते हैं. आप एक ड्रामे की बात कर रही थी और ड्रामे का नाम था ये उन दिनों की बात है. और वो ड्रामा अगर गाइज आप लोगों ने देखा है तो यू कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड व्हाट मी एंड प्रिया माइट हैव टॉक्ड अबाउट. लेकिन अगर आपने वो ड्रामा नहीं देखा तो आपने एक बहुत ही प्यारी मेमोरी को मिस कर दिया है. सोनी टीवी पे ये ड्रामा आता था जिसमें बिल्कुल हमारे जब हम 90s में बड़े हो रहे थे उसी दौर की कहानी दिखाई गई है कि 90s के लड़का लड़की हैं, स्कूल में हैं, बड़े हो रहे हैं और वो सारा माहौल, वो सारी बातें, वो सारी जो एक्टिविटीज़ वो करते थे वो ऐसा लगता था जैसे मैं और आप जो देख रहे हैं वो ड्रामा मैं भी कर रही थी वो. और एग्जैक्टली हमारे भी घरों वही रिस्ट्रिक्शंस होती थी और वही सारा कुछ होता था. तो इट वाज सच अ ब्यूटीफुल मेमोरी दैट प्रिया शेयर्ड विद अस एंड रिक्वेस्टेड दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग. दिस इज द टाइटल ट्रैक ऑफ द ड्रामा ये उन दिनों की बात है.

कुछ गाने सिर्फ गाने नहीं होते, लेकिन यू नो दे नॉट जस्ट अ सॉन्ग. कभी कभी एक सॉन्ग एक मेमोरी होता है, पूरी मेमोरी. एक यू नो समटाइम्स अ सॉन्ग इज अ पर्सन, समटाइम्स अ सॉन्ग इज अ प्लेस. कोई जगह आपको याद दिलाता है, कोई फीलिंग याद दिलाता है, और कभी कभी एक पूरी कहानी. और इस गाने के साथ एक पूरी कहानी जुड़ी हुई थी. और अब जो मैं अगला गाना प्ले कर रही हूँ वो है जी श्वेता की रिक्वेस्ट पे, और उन्होंने भी इस गाने के साथ जुड़ी हुई मुझे एक लंबी प्यारी सी कहानी सुनाई. दिस इज फ्रॉम कयामत से कयामत तक. सो आपकी भी कोई गाना है जिसके साथ आपकी कोई मेमोरी, कोई याद, कोई कहानी जुड़ी है तो जरूर मुझे बताइए. श्वेता, दिस इज गोइंग आउट टू यू.

और ये गाना आप सुन रहे थे शिवानी की रिक्वेस्ट पे, अ ब्यूटीफुल मेमोरी दैट शिवानी हैज विद दिस, जब वो अपने यू नो अपार्टमेंट रेंट करती थी और शेयर करती थी अपनी फ्रेंड के साथ, एंड जब वो फ्रेंड वहाँ पे नहीं थी तो शी हैड द होम अलोन, और अपने आप को मसरूफ रखने के लिए उन्होंने अपने आप को पार्टी दी और फिर गाना प्ले किया, और दिस वॉज वन ऑफ द सॉन्ग्स दैट शी लिसन्ड अ लॉट एंड एंजॉयड इट, एंड शी वॉज रिमेम्बरिंग दैट मोमेंट विद अस. इसी तरह आपकी पसंद तो चल रही है, लेकिन उसके साथ आप मुझे बताएंगे कि वो कौन सी मेमोरी है, वो कौन सा मोमेंट है जो आप इसके साथ एंजॉय करेंगे. लेकिन अब हम मूव कर रहे हैं अपने डेडिकेशन सेगमेंट की तरफ, तो वो भी आपके लिए साथ साथ प्ले करूंगी, और आपकी पसंद तो चल ही रही है. लेकिन उससे पहले अगर आपका कोई इवेंट आने वाला है, जैसे कि कोई शादी ब्याह की सेरेमनी है या हाउस वार्मिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले मुबारक हो आपको इन तमाम चीजों के लिए. कोई स्पेशल ओकेजन है तो आप इससे पहले कि परेशान हो कि अभी भाई डिकोर कहाँ से होगा, खाना कहाँ से आएगा, कितने किस तरह से सारे लोगों को अकोमोडेट किया जाएगा, तो आप अपने इवेंट को बिल्कुल इस तरह एंजॉय नहीं कर पाते, बिकॉज ऑब्वियसली वी ऑल गो थ्रू द सेम प्रोसेस एंड द स्ट्रेस इज टू मच टू हैंडल. तो लेट वनेसा इवेंट्स डू एवरीथिंग फॉर यू. वनेसा इवेंट्स ब्रिंग्स इट ऑल टुगेदर, वेन्यू, डिकोर बाय सिग्नेचर इवेंट्स, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, केटरिंग एक्सक्लूसिवली बाय बसेरा ग्रैंड. तो सबसे पहले आप वनेसा इवेंट्स के कॉन्टैक्ट पर्सन का नंबर नोट कीजिए. हिज नेम इज हरी बसेरा. हरी बसेरा साहब को कॉन्टैक्ट कीजिए. दैट नंबर इज 469-442-8770. वो नंबर है जहां आपको कॉन्टैक्ट करना है हरी बसेरा साहब से. आप कोई भी सवाल है आपका, कोई यू नो 10,000 हमारे सवाल होते हैं केटरिंग और इवेंट को लेके, सो आस्क दोज क्वेश्चंस. वनेसा इवेंट्स इज ऑलवेज देयर फॉर यू, दे आर ऑलवेज योर सेलिब्रेशन पार्टनर. और अब जो मैं गाना प्ले कर रही हूँ, ये एक खूबसूरत स्टोरी हमें किरण ने सुनाई फोन करके. किरण, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. यू वर टॉकिंग अबाउट योर हॉस्टल लाइफ व्हेन यू वर विद योर फ्रेंड्स, योर जूनियर्स, यू वर द सीनियर्स, दे वर द जूनियर्स, दे डेडिकेटेड दिस सॉन्ग टू यू, यू मिस दोज टाइम्स. ऑफ कोर्स जो लोग हॉस्टल में रहे हैं वो लोग ये डेफिनेटली अंदाजा कर सकते हैं कि हॉस्टल में रहने वाले जो आपके इर्द गिर्द लोग होते हैं वो बन जाते हैं आपकी फैमिली, बिकॉज दे आर द फैमिली क्लोजर टू यू देन द फैमिली जो कि दूर हो जाती है. तो उस वक्त जब आपको कोई खुशी या गमी होती है तो वही आपकी फैमिली बनकर आपके साथ खुशी में खुश होते हैं और गम में गमगीन होते हैं. सो दिस इज गोइंग आउट टू किरण. दिस वाज वंस डेडिकेटेड टू हर बाय हर जूनियर्स इन हॉस्टल. टुडे आई एम डेडिकेटिंग दिस टू किरण.

जी हाँ, बरसों याद कर ही रहे हैं और करते ही रहेंगे, यादें तो यही चीज़ होती है। पर आगे बढ़ते हुए मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहती हूँ जी, और वो है हमारी, हम गाड़ियाँ लेके निकलते हैं, कोई ना कोई काम हमारा चल रहा होता है, और अगर सारे में देर इज़ अनफॉर्चुनेटली एन एक्सीडेंट, कोई आपका कार या ट्रक एक्सीडेंट है या फिर स्लिप और अ फॉल इंसिडेंट है, तो अटर्नी ओमार ख्वाजा इज़ द राइट पर्सन टू कॉल। आप खुद इन पेपर वर्क के चक्कर में मत फंसीए, डीलिंग विद द इंश्योरेंस कंपनी, द लीगैलिटीज, निटिग्रिटीज इतनी सारी होती हैं इसमें कि हमें बहुत ज़्यादा पता भी नहीं होता कि हमें क्या करना चाहिए किसी पर्टिकुलर सिनेरियो में। सो आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए, एंड लेट अटर्नी ओमार ख्वाजा डू द रेस्ट फॉर यू। द लॉ ऑफिसर्स ऑफ ओमार ख्वाजा विल टेक केयर ऑफ इट। दे विल नॉट ओनली फाइट योर केस, दे विल गेट यू द बेस्ट कॉम्पनसेशन दैट यू डिजर्व। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आपको कुछ पे नहीं करना जब तक कि आप इस केस को जीत नहीं जाते। सो ये विन विन सिचुएशन है, एक राहत की खबर है स्ट्रेसफुल सिचुएशन में। सो डू गिव अटर्नी ओमार ख्वाजा अ कॉल। दैट नंबर इज 4693005046, 4693005046, या फिर आप उनकी वेबसाइट विजिट कीजिए विच इज attorneyomar.com, दैट इज अटर्नी ए ओमार omar.com। अच्छा, ये जो अगला गाना आप सुन रहे हैं ये डेडिकेट कर रहे हैं सुहेल साहब अपनी मिसेज मरियम को। सो मरियम, अगर आप सुन रही हैं, सो हेयर इज़ अ डेडिकेशन गोइंग आउट टू यू फ्रॉम योर हस्बैंड। अगर आपके पास भी कोई डेडिकेशन है तो हम डेडिकेशन का सेगमेंट भी हम यू नो कंटिन्यू कर रहे हैं। सो अपनी रिक्वेस्ट कीजिए, या आप किसी प्यारे को डेडिकेट करना चाहते हैं कुछ, वी आर ऑल इयर्स। 9722355555।

0: Frisco. Get ready to celebrate silver like never before. Chandrika Silver by Shri Krishna Jewelers celebrates its grand launch. Discover exquisite handcrafted silver jewelry and artifacts with exciting inaugural offers and raffle prizes. Visit 7777 Warren Parkway, Suite 280 Frisco. Chandrika Silver, the tradition shines in silver.
1: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
2: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
3: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
4: Hello, Weekend Lunch Emergency Helpline. How may I help you?
5: Hello, mere relatives aa rahe hain. Everyone's asking lunch mein kya hai?
4: Fikar not. We have the perfect solution.
2: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25-plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
6: जिंदगी एक रंगमंच है
5: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग एक्सपीरियंस अ स्मूथ सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com
7: Dallas has its own superheroes. Fighting dust, clogs, blocked vents, and hidden fire hazards every day. And now, the superheroes of ducts are turning one. Duct Time celebrates its first anniversary in Dallas. For Duct Time services, call Jeetu Patel at 972-877-2500 and book your appointment today for a cleaner, safer, and fresher home.
8: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट
9: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव
8: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स
9: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन
10: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
11: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
12: अरे सुन ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है
13: माँ रील्स पे सब लकी ही होते हैं जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो
14: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है पंडित राम तुलसी जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है करियर हो स्टडीज शादी या फ्यूचर प्लानिंग हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट
13: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com
15: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चौकटाव कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस पोकर हो या ब्लैक जैक एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए लकी बन जाइए चौकटाव कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरेंट एंटरटेनमेंट लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
16: कितने आदमी थे
17: सर का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है

जी हाँ, मलिक साहब की रिक्वेस्ट पे प्ले कर रही थी ये गाना. एक ब्यूटीफुल मेमोरी उनकी इस गाने के साथ जुड़ी है. व्हेन ही वाज एट अ वेडिंग सेरेमनी और ये गाना प्ले हुआ और सब लोग कहने लगे कि मतलब क्या ये सर सर लगा दिया है आपने, डीजे ने लगाया था जी ये गाना. मलिक साहब थैंक यू सो मच फॉर द इम्पोर्टेंट बात. जो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे कि आपने ये गाना याद दिलाया हमें, सर फिल्म का ये गाना. सर फिल्म में बड़े खूबसूरत गाने थे और पूजा भट्ट थी उसमें और अतुल अग्निहोत्री थे, इफ आई डोंट रिमेम्बर दैट रॉन्ग, और नसीरुद्दीन शाह थे जिन्होंने सर का किरदार अदा किया था, परेश रावल थे जिन्होंने पूजा भट्ट के वालिद फादर का किरदार अदा किया था, बड़ा इंटरेस्टिंग रोल था उनका. सो इंटरेस्टिंग गाना आपने हमें याद दिलाया. आगे बढ़ते हुए आपको बताएं जी, दिस पार्ट ऑफ आवर शो इज प्राउडली ब्रॉट टू यू बाय एजी फिनटैक्स, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स एंड अकाउंटिंग फर्म्स हैं जी. यूएस में ऑफर करते हैं ट्रस्टेड टैक्स अकाउंटिंग, पेरोल, बुक कीपिंग और बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज. सो चाहे आपका नया बिजनेस हो, एस्टैब्लिश बिजनेस हो, इंडिविजुअल हो आप, ग्रुप, जो भी आपका सवाल है, आप एजी फिनटेक से एक बार बात करके देख लीजिए. यू माइट बी एबल टू फाइंड ऑल योर आंसर्स विद देम. 4699429888 इज दैट नंबर, या फिर agfintax.com इज वेयर यू नीड टू लॉग ऑन. ये जो नेक्स्ट गाना है ये रोजीना की रिक्वेस्ट पे लगाने लगी हूँ जी. द मेमोरी एसोसिएटेड विद दिस सॉन्ग इज डेफिनेटली अ ब्यूटिफुल वन. व्हेन शी गॉट एंगेज्ड एंड देयर वाज अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, और जब अपने फियांसे के साथ कॉन्टैक्ट होता था, बात होती थी फेसबुक के थ्रू व्हाटएवर, सो दिस वॉज वन ऑफ दोज सॉन्ग्स दैट रिप्रेजेंटेड देम एंड देयर रिलेशनशिप. रोजीना, going out to you.

Here's wishing Kabir a very happy birthday. And this next song is requested by Ravi. Ravi, aapka ye gana play kar rahe hain movie Zeher se. Lekin usse pehle tamam sunne walon ko bataun ki lekar aa rahi hoon aapke liye ek giveaway. The giveaway is brought to you by Barista House. Ji haan. Sabse pehle to aapko bataun ji ki Barista House, jo ki bahut hi popular destination hai Denton mein, wo ab aapke liye operate kar rahi hai Frisco mein. Brought to you by Prism Bar and Grill. Yahan aapko kya milega? Behtareen khana. Hyderabadi biryanis, North Indian favorites, delicious desserts, aur bhi bahut kuch. To sabse pehle address note kar lijiye ki Barista House Frisco mein kahan khula hai. It is at 6377 Custer Road, Frisco, Texas. Aap yahan pe zarur visit kijiye. You're going to absolutely enjoy the food. Aur ab aapke liye aa raha hai ye $20 ka gift coupon for dine in only. To agar aap jeet gaye to aapko dine in mein ye $20 ka gift coupon milega. So do enjoy that. 972-235-5555 is the number to the studio. Aur sawal koi nahi, bas baat ek aapse karni hai. Acha, ye khas taur pe un logon ke liye, agar aapki shaadi ho gayi hai to mujhe bataiye ki wo kaun sa wedding song tha जो आपको आपकी शादी की याद दिलाता है. योर वेडिंग सॉन्ग, वेरी पर्टिकुलर योर वेडिंग सॉन्ग. या फिर अगर आपकी शादी होने वाली है तो बताइए कि वो कौन सा वेडिंग सॉन्ग है जो आप सुनना चाहते हैं या आपको लगता है कि ये मेरा वेडिंग सॉन्ग होने वाला है. आई एम ओपनिंग दिस टू एवरीवन. यू वेडेड, यू नॉट वेडेड, इट डजंट मैटर. यू कैन पार्टिसिपेट इन दिस $20 गिफ्ट कार्ड ब्रॉट टू यू बाय बरिस्ता इन बरिस्ता हाउस इन फ्रिस्को. यू हैव टू टेल मी व्हाट इज दैट वन वेडिंग सॉन्ग दैट रिमाइंड्स यू ऑफ योर वेडिंग, और यू वांट इट टू बी योर वेडिंग वन.

बरिस्ता हाउस की तरफ से आए थे गिव अवे. गिव अवे का टाइम खत्म हो चुका है जी, खाना खत्म, और अब जो है विनर अनाउंस करने का टाइम आ गया है. जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आपका लक ही आपकी विन डिसाइड करता है. जिस सीक्वेंस में आप मुझे कॉल करते हैं वो एक मैथ के फॉर्मूले में डलता है और एक नंबर निकलता है, और वो नंबर जो लकी कॉलर का होता है वो विनर होते हैं. सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ, थैंक यू फॉर योर कॉल्स पल्लवी, यास्मीन जी, किरण, जूही, पुष्पा. अभी भी फोन लाइन्स बज हो रही हैं, टाइम खत्म हो चुका है. और हमारी आज की लकी विनर है कॉलर नंबर 4, विच इज किरण. सो किरण, कॉन्ग्रेचुलेशन, जीत लिया है आपने ये गिव अवे. दिस इज अ $20 गिफ्ट कार्ड गोइंग ऑन टू यू फॉर डाइन इन ओनली फ्रॉम बरिस्ता हाउस. दो दिन का हमें टाइम दीजिए आपका नाम और नंबर रेस्टोरेंट पे पहुंचाने के लिए. दे आर लोकेटेड इन फ्रिस्को, 6377 कस्टर रोड, और उसके बाद आपके पास 7 दिन का टाइम होगा टू गो टू बरिस्ता हाउस इन फ्रिस्को एंड अवेल योर $20 डाइन इन ओनली. अच्छा जी, ये तो हुई ये बात, और कहानियां आप सबकी बड़ी ही प्यारी प्यारी. जैसे पल्लवी का कहना था कि तुझमें रब दिखता है इज आर वेडिंग सॉन्ग, बिकॉज वही हम प्ले भी कर रहे थे और वही हमारी एक दूसरे के लिए फीलिंग्स भी थी. इसी तरह यास्मीन जी ने एक बहुत प्यारा गाना याद दिलाया, उंगली पकड़ के बाबा. वो अभी मैं थोड़ी देर में डेफिनेटली राजी का ये गाना आपके लिए प्ले करूंगी. किरण का गाना है आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के. मेरा ख्याल है उस जमाने के जो उस दौर में शादी हो रही थी जब राजा हिंदुस्तानी आई थी, तो सारी लड़कियों का ये फेवरेट गाना होता था अपनी शादी पे, तो और शादी पे प्ले भी होता था. और हमारी जो वीडियोज बनती थी, वो जो वीडियो कैसेट बाद में आया करती थी, उसमें बैकग्राउंड में जरूर ये गाना उस दौर के शादी ब्याह की वीडियोज में आपको देखने को मिलेगा. जूही, दिन शगनादा, दैट इज योर फेवरेट सॉन्ग. पुष्पा, आपका फेवरेट सॉन्ग है मिले हो तुम बड़े नसीबों से, या फिर तुम देना साथ मेरा मेरे हमनवा. ये हर गाना इतना खूबसूरत, हर गाना इतना शानदार. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी फोन कॉल्स का. लकी विनर इज किरण, बट आप तमाम लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, शेयर योर हैप्पी मेमोरी विद मी. थैंक यू सो मच.

0: With that, it is a wrap for the Filmi Farmaish segment. Aadha ghanta mere paas aur hai, jisme aapko dungi news, traffic, currency update, aur uske baad hamare saath connect honge Sanjay Mathur ji from Mathur Law Offices. There is so much more lined up for you. I'm here with you till 5 p.m. Stay tuned.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
7: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: Arre, Dallas ke aasmaan mein itne saare tara nahi. Business owners ke liye to sirf ek hi tara kaafi hai. तारा कमर्शियल एनर्जी 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर होटल्स गैस स्टेशंस वेयरहाउसेस मेडिकल फैसिलिटीज रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस तारा कमर्शियल एनर्जी पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर टू डेकेड्स कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे तारा कमर्शियल एनर्जी जो आपके बिजनेस को रोशन रखे
9: बेटा 95% आए
10: हाँ मम्मी
9: गुड अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए
11: मेरा
9: हाँ प्रॉफिट मार्जिन कैश फ्लो टैक्स प्लानिंग बिजनेस गोल्स सारे अकाउंट्स अपडेटेड
11: वो
12: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने AG FinTax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG FinTax led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
13: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
14: Don ko pakadna mushkil hi nahi. Namumkin.
15: Lekin aapke doctor ka appointment milna usse bhi mushkil hai. एक हफ्ता दस दिन अगले ट्यूसडे
16: तारीख पर तारीख तारीख पर तारीख
17: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट आज बुखार आज डॉक्टर आज इन्फेक्शन आज डॉक्टर आज एनुअल चेकअप आज डॉक्टर प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग प्लेनो फ्रिस्को मकिनी ऑबरी
15: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259
17: इफ यू होल्ड H1B F1 L1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
18: Yaar, festival season aa raha hai. Aur meri wife ne shopping list bhi de di hai.
19: Kitni lambi list hai?
18: Bas, do pages. Indian dresses, mithai, namkeen aur haan, ek puja mandir bhi.
19: Are, to sab kuch India se hi mangwa lo. SFL Worldwide hai na. India mein aapke doorstep se saman pick up karke, yahan seedha aapke ghar deliver karte hain. Puja mandir ho, jhula ho ya furniture, saman chota ho ya bada, ocean freight ke through sab ship ho sakta hai.
20: This festive season, India ko apne aur kareeb laayein with SFL Worldwide. Shipping and moving services from India to the USA and worldwide. Visit SFLWorldwide.com.
21: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
22: Har samay
20: समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
10: दैट मैजिक रिमूवल हो, लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो, गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी।
20: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। नाउ इट्स योर टर्न, समस्या का पक्का समाधान, एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com।
11: RCR स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। कल हिंदी हिंदी बोल।
21: You know my voice on the radio. Now let me be a voice you can trust in real estate. मैं हूँ नवनीता खेमका, रियल्टर विद केलर विलियम्स रियल्टी। Buying, moving or selling a home? I bring market knowledge, creative marketing and personal commitment to your journey. Because to me, real estate isn't just about properties. It's about you, मेरे दोस्तों, your possibilities and your new beginnings. Every home has a story. Let's create yours together.
22: Call Namnita Khemka at 347-449-4242.
11: Phone uthaye, number dabaye, 347-449-4242.
20: Family ko chahiye North Indian, friends ko South Indian. Ab jaye to jaye kahan?
10: Simple, Basera Grand. One destination, double the flavor.
23: Matlab crispy golden dosa?
10: Yes, rich North Indian favorites, flavorful loaded biryanis aur ek delicious buffet jahan choices hi choices hain.
23: Wow, great food, full variety and everyone's happy.
20: Family dinner ho ya friends ke saath celebration, make every meal grand at Basera Grand. Basera Grand, come hungry, leave happy together.
24: When the unexpected becomes inevitable, the real story begins.
25: Is van ki kali shakti aur agar koi raat ko van mein pravesh karta hai तो उसकी लाश भी नहीं मिलती।
24: Get ready for a brand new action packed experience full of emotion and suspense.
26: एक तरफ है वन देवी और एक तरफ है विकास।
24: The वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट,
27: अ हिंदी मिथोलॉजिकल फोक थ्रिलर डायरेक्टेड बाय अरुणव कुमार एंड दीपक कुमार मिश्रा। सिजलिंग द बिग स्क्रीन फॉर द फर्स्ट टाइम टुगेदर, सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया।
24: ऑन 25th September इन सिनेमाज नियर यू।
28: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल, फोनेशिया 104.9 FM।

आप सुन रहे हैं 104.9 FM फाइनेंशियल रेडियो. मैं हूं किरण आपके साथ. आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण लेके मंडे थ्रू फ्राइडे आपके साथ रहती हूं 2:30 बजे से 5 बजे तक. आज 1 बजे से हमारा सफर जारी है. एंड सम ब्यूटिफुल सॉन्ग्स एज वेल एज सम ब्यूटिफुल मेमोरीज दैट वी क्रिएटेड टुगेदर टॉकिंग अबाउट दोज ब्यूटिफुल डेज एंड टाइम्स. तो जी, अब आगे बढ़ते हुए आपको बताऊं कि पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट लेके आया है, और वो ये कि अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है या फिर पैशन हेल्थ आपके नेटवर्क में नहीं आता, आप जाना चाहते हैं लेकिन नेटवर्क में नहीं है, तो देन दे आर ब्रिंगिंग यू पैशन हेल्थ डायरेक्ट. फॉर $85 अ मंथ आप ये मेंबरशिप खरीद सकते हैं. और आपको क्या मिलेगा जी? दिस इंक्लूड्स प्राइमरी केयर, प्रिवेंटिव केयर, मेडिकेशन मैनेजमेंट, टेली हेल्थ और भी बहुत कुछ. तो सबसे पहले तो अगर ये सुन के आपके जहन में कोई सवाल आया है तो आप उनको कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट भेज सकते हैं इस नंबर पे, एंड दे विल गेट बैक टू यू. दैट नंबर इज 214-666-6259. नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए, 214-666-6259. कॉल और टेक्स्ट, और यू कैन विजिट देयर वेबसाइट विच इज पैशन हेल्थ physicians.com. आपको ये बताती चलूं कि दिस इज नॉट अ हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम, एलिजिबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई, सो डोंट फॉरगेट टू मेक दैट कॉल और सेंड अ टेक्स्ट टू फाइंड आउट मोर इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस. और साथ ही साथ उनकी जो अर्विंग और फ्रिस्को की लोकेशन है, दे आर ओपन सैटरडेज एंड संडेज टू फॉर यू स्पेशली. सो दिस इज पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर ब्रिंगिंग सो मच मोर फॉर यू. पैशन हेल्थ physicians.com. लॉग ऑन एंड चेक आउट एंड फाइंड आउट मोर. तो ये हुआ आपके लिए ये. और अब लेके जाऊंगी आपको वेदर की अपडेट की तरफ. आज है जी सितंबर द 21st, दैट इज मंडे, 4:13 PM इन द स्टूडियो. एंड इस वक्त सिटी ऑफ मिकनी में है 97 degrees. हाउएवर इट फील्स लाइक 102. पता नहीं हम 3 digits से फील्स लाइक से कब निकलेंगे बाहर. एक अजीब सा समा है बाहर. लेकिन आज जो है वो कहीं कहीं बारिश रही, मोस्टली वैसे सनी रहा, लेकिन कहीं कहीं आपको 30% चांसेस ऑफ शाज नजर आए, शायद कहीं बरसी भी हो. हाईज इन द मिड 90s, जबकि हीट इंडेक्स वैल्यूज अप टू 102 to 103. आज का शाम भी रहेगी मोस्टली क्लियर विद 20% चांस ऑफ शावर्स एंड थंडरस्टॉर्म्स इन द इवनिंग, देन पार्टली क्लाउडी आफ्टर मिडनाइट. लोज विल बी इन द लोअर 70s. पोलन काउंट आज का 8.9 विच इज मीडियम हाई. सो प्लीज, पोलन से आजकल काफी लोग परेशान हैं, तो अपना ध्यान रखिए. यूवी इंडेक्स आज का है 8 विच इज हाई अगेन. सो कीप योर सनस्क्रीन हैंडी, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, पीते रहिए. सनराइज आज का है सुहुआ सुबह 7:13 AM, 7:13 AM, जबकि आज का सनसेट होगा 7:24 AM.

जी हाँ, लेकिन यहाँ कुछ मुफ्त का नहीं है जी. गोल्ड प्राइस अपडेट का टाइम आ चुका है. गोल्ड प्राइस पर आउंस राइट नाउ इज $4,343.77, जबकि एक ग्राम सोने की कीमत इस वक्त है $139.66. कल की निस्बत एक ग्राम सोने की कीमत में $1.08 की कमी हुई, जबकि एक आउंस सोने की कीमत में $33.85 की कमी देखने को मिली. बट दैट्स प्रीटी मच ऑल दैट आई हैव फॉर यू विद योर फाइनेंस मैटर्स राइट हियर ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण.

0: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
1: Call 857-891-8942 today.
2: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
3: साइन मिलना मुश्किल है लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स। और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो। विजिट signaturecuisine.net। सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
4: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। माई फैमिली होम लोन .com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट माई फैमिली होम लोन .com और कॉल 4697343338 4697343338। माई फैमिली होम लोन .com इज पावर्ड by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
5: We need to talk.
6: अब क्या हुआ?
5: Nothing. It's not you.
6: Oh no.
5: It's the distance.
6: Distance? We live 10 minutes apart.
5: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
7: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
8: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Umar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Umar Khawaja, your legal lifeline.
9: It's the time to clock out.
10: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame, jahan tandoor ki smoky khushboo, sizzling flavors aur chatpate appetizers make an ordinary weekday feel like a delicious celebration. Every Monday through Friday from 5 to 8 p.m., order any two entrees and get one appetizer absolutely free. Bring your family, friends and your appetite. Visit Tandoori Flame in Garland. Terms and conditions apply.
11: What would happen to your business if a key owner, partner, or top employee passed away unexpectedly? Would revenue, credit, client relationships, or daily operations be affected? KeyPerson Life Insurance can help provide funds to support the business during a difficult transition. Protect the people who help keep your business running. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Benefits and tax treatment depend on individual circumstances. Consult qualified legal and tax professionals. Not legal, tax or investment advice.
12: Yaar, usne fir se daat diya. Traffic alag. और ऊपर से ये स्ट्रेस।
13: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
12: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
13: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
12: ये क्या होता?
13: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
14: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
15: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन अवेलेबल।
16: Hi Dallas, this is Ranbir Kapoor and you're listening to FunAsia Radio.

very warm welcome to the listeners of Fun Asia Radio 104.9 FM. This is your evening drive time show, jiska naam hai The Bindaas Show, only on 104.9 Fun Asia Radio. Monday to Thursday, I give you company, and my name is Banda Bindaas, Marvin Das. 5 se 7 rehta hun ji aapke saath saath, giving you company with some lovely music and some baatein, kuch aapki, kuch meri, mil jul ke bas khichdi banate hum. और उस खिचड़ी को देसी घी और थोड़ा सा अचार के साथ अगर खा लें तो खिचड़ी भी ज़बरदस्त बन जाती है दोस्त. आपकी रिक्वेस्ट के लिए, आपकी बातों के लिए स्टूडियो की लाइन हमेशा खुली है. 972-235-5555 इज द नंबर ऑफ द स्टूडियो. एंड ऑफ कोर्स आई एम गोना बी विद यू टिल 7. बर्थडेज, एनिवर्सरीज, हर खुशी की बात हम यहाँ मनाना चाहते हैं जी आपके साथ. एंड आई वुड बी हैप्पी टू टेक पार्ट इन योर जॉयज व्हाट एवर यू आर सेलिब्रेटिंग टुडे. लेट्स टेक यू टू द नेक्स्ट ट्रैक व्हिच इज द फर्स्ट ट्रैक फॉर दिस इवनिंग, एंड दिस इज something that will always put a smile on your face. Here we go.

मैंने आइडेंटिफाई कर लिया है, पता है क्या चक्कर है। एक्चुअली जो मर्दों का दिल होता है ना, ये छिपकली की दुम जैसा होता है भैया, जितनी बार भी टूट लो फिर जुड़ ही जाता है कहीं ना कहीं। एक आपने देखा कभी छिपकली की दुम को? आप अगर कभी देखो ना, उसकी अगर दुम कट भी जाए ना, वो थोड़ी देर तड़पती है, दुम अलग चली जाती है, फिर वो छिपकली की दुम रीग्रो हो जाती है। बस हम मर्द भी कुछ ऐसे ही हैं यार, हमारा मतलब दिल तगड़ा है, कमज़ोर नहीं है, टूट टाट जाए तो फिर क्या है, बस कहीं से उम्मीद होनी चाहिए, जुड़ फटाफट जाएगा। एक नया गाना है जनाब, द वियान इज द मूवी एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना आर इन दिस वन, ब्रांड न्यू ट्रैक रिलीज्ड जस्ट अबाउट 12 आवर्स अगो, दिस इज ठुमक ठुमक।

0: ब्रांड न्यू मूवी है जनाब, आने वाली है जल्दी, द वियान। इसका नाम विवान है, विवान, वी वी ए एन। अब विवान है, विवान ही लग रही है, वियान नहीं, विवान ही है, वी वी ए एन। सिद्धार्थ मल्होत्रा, तमन्ना भाटिया, एंड दिस वन इज गोना बी समथिंग डिफरेंट होपफुली। मतलब सेम जो बॉलीवुड का स्टाइल है ना, कि एक मूवी चल जाती है वही मसाला दूसरी चाट में पेलने की कोशिश करते हैं वो, बट हमारे जो व्यूअर है वो क्लेवर है, वो नहीं पकड़ते, वो कहते हैं चाट नहीं है ये, गलत है, आलू पापड़ी लाओ। एक ब्रेक के बाद मैं आया वापस, डोंट गो एनीवेयर।
1: ब्यूटीफुल होम रवि, मिलियन डॉलर्स, वाओ।
2: थैंक यू। वेल, सना एंड मी जस्ट गॉट लकी एज हुसैन पंजवानी हेल्प्ड अस विद द परचेज ऑफ आवर फर्स्ट होम। ही प्रैक्टिकली वॉक्ड अस थ्रू द एंटायर प्रोसेस। एवर सिंस, विद हिज गाइडेंस एंड सपोर्ट, आई हैव बिकम अ प्रीटी सैवी रियल एस्टेट इन्वेस्टर मायसेल्फ। उनका रेडियो शो सुना था एंड देन कंसल्टेड विद हिम फॉर ऑल माय फाइनेंसिंग नीड्स। नाउ माय रियल एस्टेट पोर्टफोलियो हैज ग्रोन इनटू मेनी सिंगल फैमिली होम्स, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस, एग्रीकल्चरल लैंड, और अब ये मिलियन डॉलर प्रॉपर्टी भी।
3: हाय, दिस इज हुसैन पंजवानी। Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
4: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
5: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: If I get married, then I'll wear a designer lehenga. वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
7: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
8: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
9: वेट, इतना सब और प्राइस?
8: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
10: मैं हीरो।
11: अरे यार, घर मिल गया।
12: घर तो देख रहा हूँ, लेकिन इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग।
8: इसलिए कॉल करो अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट। अजय इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर। वो सिर्फ घर नहीं दिखाते, हर प्रॉपर्टी का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं, बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करते हैं, बिल्डर इंसेंटिव दिलवाते हैं और क्लोजिंग पर कैशबैक भी।
12: सीरियसली, अच्छे सर्विस भी और कैशबैक भी?
8: बिल्कुल। विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई सो मेनी पीपल आर रेविंग अबाउट हिम।
13: हेलो, वीकेंड लंच एमरजेंसी हेल्पलाइन, हाउ मे आई हेल्प यू?
14: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवन इज आस्किंग लंच में क्या है?
13: फिकर नॉट, वी हैव द perfect solution.
8: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
12: Dad, प्रॉपर्टी पेपर्स कहाँ है?
15: लैपटॉप में।
12: इन्वेस्टमेंट?
15: गूगल ड्राइव।
12: इंश्योरेंस? पासवर्ड्स?
15: बेटा डोंट वरी, मुझे सब पता है।
12: डैड, वही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको पता है।
8: योर फैमिली शुडंट हैव टू सर्च फॉर आंसर्स व्हेन यू आर नॉट देयर टू गिव देम।
16: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद एनआरआई वेल्थ। विद प्रॉपर एस्टेट प्लानिंग, प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव बिल्ट एंड गिव योर फैमिली क्लैरिटी एंड कंट्रोल।
8: कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799, और विजिट nriwealth.com फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन। एनआरआई वेल्थ, डोंट लीव अ मेस, लीव अ प्लान।
17: देसी फ्लेवर्स भी और टेक्सास के फेवरेट्स भी, अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह, HEB में। सोना मसूरी राइस, नानक पनीर, पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ, वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं। और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहाँ पसंद है। अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स, मिड सीरीज, अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं। तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स। HEB, हियर एवरीथिंग इज बेटर।
18: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
8: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense. Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
19: Hi, I am Shah Rukh Khan. You are listening to Fun Asia.

0: मैंने दिल से पूछा कि दिल यार तू ही बता मुझे कि जो मैं तेरी धड़कनों में महसूस करता हूँ क्या ये प्यार है। दिल कहता देख बेटा मेरा काम है ब्लड पंप करना, फालतू बोलेगा तो ये काम मैं बंद कर दूंगा। इसलिए ज्यादा सवाल ना पूछा करो दिल को, दिल का जो काम है उसको उसका काम करने दिया करो। वैसे भी मैंने पूछा था किसी से कि ये प्यार व्यार मतलब चक्कर क्या है, लोगों को लव इश्क कितना पसंद क्यों आता है। तो एक लेडी बोली कि नहीं मार्विन जी, ये जो जब लवर नहीं मिल पाते ना, एक दूसरे दूर होते हैं, तो इसकी जो तड़प है ना, वो तड़प जो जलन है बस उसका बड़ा मजा आता है। मैं कहा मैडम इसमें क्या प्रॉब्लम है, अगले हफ्ते मेरे घर हलवाइयों ने आना है, पकौड़े तले जा रहे होंगे, हाथ डाल देना तेल में।
1: रस पीने की प्यास है, बंदा ये बिंदास है, रस पीने की प्यास है।
0: जलन और तड़पन ऐसी मिलेगी जो आपको प्यार में भी नहीं मिलेगी। वेलकम बैक टू योर इवनिंग ड्राइव टाइम शो, 5:25 स्टूडियो घड़ी की क्लॉक में। आई एम गोना बी विद यू टिल 7 o'clock, September 21st, मंडे की शाम है जी। एंड मंडे का मतलब मंडे, मन में जो आए वो करने वाला दिन है आज। इसलिए जो मन में आता है, क्या खाने का दिल कर रहा है आपका, भाभी नहीं बनाएंगी तो खरीदते हुए लेके जाओ, इतनी सी बात नहीं समझते यार तुम। खैर, दिस पार्ट ऑफ द शो ब्रॉट यू बाय अटर्नी ओमर, जिनका हम नाम आपको हर रोज बताते हैं। और इसलिए बताते हैं कि कभी भी अगर आपका जिंदगी में खुदा ना करे कोई एक्सीडेंट हो जाए, स्लिप एंड फॉल हो जाए, जो कि हम कभी उम्मीद नहीं करते कि हो, बट अगर ऐसी प्रॉब्लम आए तो वन नेम दैट यू नीड टू रिमेंबर इज अटर्नी ओमर, एंड हिज वेबसाइट इज attorneyomar.com। नाउ व्हाई डू यू नीड हिम, बिकॉज ही इज द वन हु इज गोना फाइट फॉर ऑल ऑफ योर लॉसेस, चाहे आपकी गाड़ी का नुकसान हो, आपका जॉब लॉस हो, मेडिकल बिल्स, व्हाटएवर इज दैट यू आर पेइंग बिकॉज ऑफ समबडी एल्सस मिस्टेक, that will definitely be fought for, and the only person who's expert in that is attorney Omar. Yaad rakhiyega naam, and if you ever need him just find him online or give them a call, attorneyomar.com.

0: 1-888-888-9914.
1: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
2: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
3: ये तारा वो तारा हर तारा.
4: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स. कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
5: तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया.
6: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
5: नहीं.
6: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
5: नहीं.
6: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
5: वो भी नहीं.
6: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त.
4: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए. बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो. फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. AG Fintax. Your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply. Satya.
7: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
8: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
4: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
9: तुमसे मिलके दिल का है.
8: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
4: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क.

0: दुनिया के लिए बैडमैन लेकिन अपनी फैमिली के लिए गुड मैन। गुलशन ग्रोवर साहब का आज है बर्थडे, मेरे गन्ना चकुए।
1: गुलशन ग्रोवर साहब का जन्मदिन आज के दिन होता है जी, 21st of September 1955। बॉलीवुड के बैडमैन और पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते हैं, दिल्ली में इनका जन्म हुआ। बट लॉट ऑफ मूवीज टू हिज नेम, क्या बताऊँ कितनी फिल्में हैं। हम पांच, बुलंदी, रॉकी, देन कम्स दी 80s, मतलब 80s से लेके अप अंटिल अर्ली 2000s में, अभी मैं कहूँगा 2010 2013 21 तक भी बहुत सारी जगहों में इन्होंने काम किया है। या ही मूव डाउन टू OTT प्लेटफॉर्म मोर आफ्टर द 2020 सीजन, बट उससे पहले बहुत सारी फिल्में, लॉट ऑफ मूवीज टू हिज नेम एंड अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू द बैड मैन फ्रॉम द टीम हियर एट फन एशिया, गन्ना चूस क्या। ठीक है जी, याद आ जाती है कुछ बातें इनकी ना। खैर, एक गिव अवे का टाइम आ रहा है, उससे पहले आपको ये बता दूं, दिस पार्ट ऑफ माय शो इज ब्रॉट टू यू बाय टेक्सास प्राइमरी केयर। दे आर हियर इन फ्रिस्को। इफ यू हैवंट डिसाइडेड अ PCP फॉर योरसेल्फ येट, आई रेकमेंड डॉक्टर आचार्य हु इज विद टेक्सास प्राइमरी केयर एंड लोनॉक्सी मेडिकल। दे हैव टू लोकेशंस, वन इज ऑन काइजर वे इन फ्रिस्को, द अदर वन इज ऑन मेन स्ट्रीट। बोथ ऑफ द लोकेशन सर्व्स यू विद द मल्टीपल सर्विसेज, चाहे इन हाउस एक्सरे सर्विसेज हो, इन हाउस लैब्स हो, दे डू हैव अ मेड स्पा इन हाउस एज वेल and many other services. Go check them out in Frisco. Texas Primary Care is the name of that facility, or you can simply Google Dr. Acharya with Texas Primary Care. He is definitely going to take excellent care of you. All right, time to talk about a giveaway. This one is coming from, let me double check on this, but giveaways hum aapke liye roz leke aate hain, funija leke aate hain. This one is coming from Miraj Hookah Lounge, jo ki de rahe hain aapko $20 off their $50 bill. If you spend $20 with them, $50 with them, you will not have to pay $20 and just pay them $30. $50 ke bill pe $20 bilkul off milega. Happy hours Monday to Thursday 11 AM to 6 PM, ladies night, college night, bahut sare events karte hain, and they have great food. Of course, they have a hookah, which is premium hookahs available for you. Cocktails, which are definitely crafted to perfection. Live music and DJ nights. Right now, I'm giving you a chance to win $20 off their $50 bill. Now, I will ask you a question. Jo mujhe dega creative awaaz, do log creative answer jo denge, unko milega ji ye $20 off. Yaad rakhiyega, this one is in McKinney. And if you're answering my question, make sure you're able to go to McKinney and enjoy this deal, which is $50 ke bill pe $20 off. Aapko mujhe ye batana hai ki bhature se zyada phoolne wali cheez kya hoti hai. Creative answer, soch samajh ke dijiye jawab. And jo dega zabardast kisam ka different answer, they will get themselves $20 off this $50 bill at Miraj Hookah Lounge. Sawal kya hai mera? भटूरे से ज़्यादा फूलने वाली चीज़ क्या होती है भैया? कॉल करके स्टूडियो की लाइन पर बताइए। दो लकी विनर पाएंगे $20 ऑफ देयर $50 बिल एट मिराज हुक्का लाउंज। व्हाट इज दैट थिंग दैट फूलो मोर ज्यादा देन इवन अ पटूरा? गुड इवनिंग फन एशिया रेडियो, हुज दिस?
2: हाय
1: पूजा, हाउ आर यू?
2: आई एम गुड, हाउ आर यू?
1: पूजा जी, आपका तो सीजन चल रहा है, हर जगह पूजा ही पूजा हो रही है आजकल।
2: That's why I'm on Funisha now.
1: All right, Pooja, you're already creative. I like that. Now tell me, bhature se zyada phoolne wali kya cheez hoti hai?
2: Do hoti
1: hai
2: actually, hamare
1: yahan bolte hain
2: ek bua aur ek
1: phupa. Ek bua aur ek phupa.
2: Acha ji. I'm bua, so my mom is like phool gayi hai to.
1: Ye bua ka muh kyon phoola hua hai? वो कहते जी नहीं, वो जब साड़ी
2: मारवाड़ी है तो हमारे कहते सूज गया, तो सूजता नहीं, फूल गई।
1: फूल गई बिल्कुल, हमारे यहाँ भी सूजता ही है, चाहे वो यू नो पिछवाड़ा हो या फिर अगवाड़ा हो या चेहरा हो। तो थैंक यू वेरी मच पूजा जी, आई हैव योर आंसर विद मी, आई एम गोना टेक बुआ, क्योंकि एक ही आंसर।
2: I don't want the mirage this thing.
1: चलो कोई बात नहीं, आपकी क्रिएटिविटी हमारे आगे खुल गई पूजा जी, यही बहुत है, धन्यवाद पार्टिसिपेट करने का। गुड इवनिंग टू यू फनेशिया, आपका नाम?
3: मेरा नाम वल्लभ है।
1: क्या है आपका नाम बड़े भाई?
3: वल्लभ
1: भाई पटेल वाला वल्लभ
3: जी? वल्लभ, right.
1: वल्लभ भाई पटेल के बाद दूसरा वल्लभ जो मैंने सुना है जिंदगी में, आपका नाम सुना है भाई। इससे पहले मैंने वल्लभ सिर्फ वल्लभ भाई पटेल सुना था, आपने तो खुश कर दिया। वल्लभ भाई थैंक यू। ये बताइए कि आपके यहाँ भटूरे से ज्यादा क्या फूलता है? वल्लभ भाई सॉरी आपकी आवाज कट गई थी, दोबारा बोले वल्लभ भाई, क्या सूझता है?
3: बीवी का मुंह फूल जाता है अगर माइक के जाने नहीं मिलता है।
1: जाता है बीवी का मुंह फूल जाता है। अच्छा जी, आप गाड़ी में अकेले?
3: जी
1: तभी तो बहुत ज्यादा तभी बड़ी दलेरी निकली है भैया। बहुत शुक्रिया वल्लभ भाई, देखते हैं आपका जवाब सिलेक्ट होता है कि नहीं। लेट मी गेट द नेक्स्ट कॉलर हियर। गुड इवनिंग फनेशिया, हु इज दिस?
4: दिस इज शशि।
1: हाय शशि, हाउ आर यू माय ब्रदर?
4: ऑल गुड मार्विन भाई, आप कैसे हैं?
1: गॉड इज ग्रेट, लाइफ इज ब्यूटीफुल। आप बताइए, आपके यहाँ पे भटूरे के से ज्यादा क्या फूलता है?
4: दो चीज, शादियों में फूफा और
1: नहीं, रुको, रुको, रुको, रुको, रुको, रुको, एक ही आंसर अलाउड है, सोच के बताओ।
4: वाइफ
1: ऑल राइट, वाइफ दूसरी बारी आ गया, बट शशि आई अप्रिशिएट योर कॉल, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट वन हियर। गुड इवनिंग फनेशिया, हु इज दिस?
5: गुड इवनिंग, दिस रेखा हियर।
1: रेखा जी कैसी हैं आप?
5: मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं मार्विन?
1: आज आप रेखा में रह के बात करेंगे कि रेखा का उल्लंघन होगा?
5: मैं थोड़ा सा उल्लंघन करके बात करूंगी।
1: चल, बताइए रेखा जी, क्या फूलता है आपके यहाँ भटूरे से ज्यादा?
5: हाँ, भटूरे से ज्यादा जब हम इंडिया जाते हैं ना, तो मेरी सासू माँ का मुंह कभी फूल जाता है जब मैं ज्यादा दिन अपनी माँ के यहाँ रहती हूँ, तो
1: सासू माँ का मुंह फूल जाता है। और आपने नाम क्या बताया था अपना?
5: रेखा।
1: रेखा जी कह रही है सासू माँ फेस ज्यादा फूलिंग, ऐसा लगता है भरिंडों का छत्ता उनके चेहरे पर टूट गया था। ऑलराइट
5: रेखा जी,
1: थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल रेखा जी, एंड यू नो व्हाट, आई एम गोना पिक यू एज वन कॉलर, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट कॉल, एंड आप होल्ड करेंगे मेरे लिए। आर यू एबल टू गो टू मेकिनी?
5: एक्चुअली आई वोंट बी।
1: अरे फिर मैं जाने देता हूँ आपको और अगले कॉलर को दे देता हूँ मौका। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, लास्ट कॉलर फॉर दिस सेगमेंट। गुड इवनिंग टू यू फनेशिया, आपका नाम?
6: मेरा नाम प्रतीक है।
1: प्रतीक भाई कैसे हैं?
6: बस अभी शाम की भी मजे ले रहे हैं, अच्छा वेदर हो रहा है।
1: अच्छा वेदर
6: और आपका सवाल भी बढ़िया है वैसे।
1: मैं तो बहुत सवाल पूछता हूँ, किसी के जवाब आज तक नहीं मिले। खैर आप बताएं, इसका जवाब आपके पास क्या है?
6: इसका जवाब है शादीशुदा मर्द का पेट और शादीशुदा बीवी का मुंह ज्यादा फूलता है।
1: अच्छा, भटूरे से भी ज्यादा फूल जाता है?
6: हाँ, भटूरे से भी ज्यादा फूल जाता है, बनाना मुश्किल हो जाता है, अंदर लाना भी मुश्किल होता है।
1: हाँ, क्योंकि ये जो चीजें हैं ना लाइफ में पक्की हैं, पेट आपका भरना और बाकी चीजें होना ये जरूरी है। चलो आपको देता हूँ जी एक नाम फ्रॉम मेकिनी, प्रतीक होल्ड द लाइन फॉर मी, एंड द सेकंड विनर दैट आई थिंक डिजर्व्स इट इज पूजा जी, जो कहती है बुआ। पूजा इफ यू लिसनिंग टू मी, गिव मी अ कॉल एट द स्टूडियो लाइन। पूजा जी जिन्होंने बोला था बुआ का चेहरा जो है मुंह ज्यादा फूलता है, बिल्कुल सही है यार। शादी के टाइम पे तो मतलब सिर्फ यही होता है, जो शादी करवा रहे होते हैं उनको ये होता है कि अब किसी और का मुंह ना फूल जाए। फूले फूले मुंहों को सुइयां, मतलब मुंहों को सुइयां लगा लगा के बेचारे मुश्किल से पिचकाते हैं, कोई ना कोई और फूला हुआ मुंह लेके पहुंच जाता है। एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद मैं वापस आ रहा हूं, डोंट वरी वेयर, दिस इज योर इवनिंग ड्राइव टाइम शो। कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन टू पूजा, आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल टू गिव मी दैट विनिंग।
7: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
8: Official tax and finance partner, AG FinTax.
7: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
8: In association with Passion Health Primary Care.
9: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
10: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, aur ab ye $1 million property bhi.
11: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
12: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
13: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
14: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
15: कौन सा?
14: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
15: अरे सारे तो सेम है।
14: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
15: ओ हाँ, ये तो अलग है।
16: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
17: यार फेस्टिवल सीजन आ रहा है और मेरी वाइफ ने शॉपिंग लिस्ट भी दे दी है।
18: कितनी लंबी लिस्ट है?
17: बस दो पेजेस। इंडियन ड्रेसेस, मिठाई, नमकीन और हाँ एक पूजा मंदिर भी।
18: अरे तो सब कुछ इंडिया से ही मंगवा लो, SFL Worldwide है ना। इंडिया में आपके डोर स्टेप से सामान पिकअप करके यहाँ सीधा आपके घर डिलीवर करते हैं। पूजा मंदिर हो, झूला हो या फर्नीचर, सामान छोटा हो या बड़ा, ओशन फ्रेट के थ्रू सब शिप हो सकता है।
19: दिस फेस्टिव सीजन इंडिया को अपने और करीब लाएं विद SFL Worldwide, शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू द USA एंड वर्ल्ड वाइड। विजिट SFLWorldwide.com.
20: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
16: What if your next home came fully loaded with over $35,000 in premium appliances, electronics and designer furnishings included? This nearly new home in Cambridge Crossing, Selina, first occupied in January, is available as the seller relocates. Enjoy resort-style amenities, upgraded interiors and truly move-in ready. Just bring your suitcase. Buyers agents, get your client under contract by October 15th and earn an additional $2,000 bonus. Call Navneeta Khemka with Keller Williams Realty at 347-449-4242.
21: Every home has a story. Let's create yours together.
22: Paneer Manchurian ka naam to suna hoga, but chili paneer bao, kahani mein twist.
23: Chicken tikka, purani mohabbat, but burrata chicken tikka, new love.
22: And pistachio lamb chops?
23: Full on flavor ka fusion.
24: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
25: Bindas bolo. बोलो बोलो बोलो बिंदास बोलो
26: जब गाना बोले बिंदास तो शाम भी होगी बिंदास जॉइन बंदा बिंदास मारविन दास मंडे से थर्सडे फ्रॉम 5 PM टू 7 PM फॉर म्यूजिक मस्ती और फुल ऑन एंटरटेनमेंट पावर्ड बाय टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर और हिमालयन बाजार सिर्फ अनीशा रेडियो पर
27: Hi, this is Akshay Kumar and you're listening to Funasia Radio.

Absolutely, Bindaas Bolo Ji. Naam Marvin Das Bolo. This is the Evening Drive Time Show, jiska naam hi hai The Bindaas Show, only on 104.9. Fun Asia, bringing the community together. Today marks 21st of September. Monday ki shaam hai, aur Monday ki shaam ko, matlab, mera jo time hai aapke saath, 7 baje tak ka hota hai, ji. Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday, 5 to 7 p.m. This show is there for you. Agar mausam ki baat ki jaye, to yesterday, upar wala meherban hua, पर फिर से नाराज हो गया. मतलब उसने कहा चलो तुम कम से कम विश्वास रखो कि मैं हूं. उसने बारिश करवाई मेरे पास, तो बड़ी जबरदस्त तेज बारिश हुई कोई 5 मिनट के लिए. उसके बाद बूंदाबांदी और फिर थैंक यू टाटा बाय बाय. कह रहे थे कि आज बारिश होगी, बट ऐसा हुआ नहीं भैया. अब अभी भी कह रहे हैं कि संडे, मंडे और ट्यूजडे जो अगला हफ्ता आ रहा है उसमें बरसात की शंका ज्यादा है. But today's temperature was 96 for a high, 72 for a low. Tomorrow we're looking at 90 and 72, 91 and 72. So things are dropping down, but not the way we would have expected it to. कोई बात नहीं यार, सारी expectations थोड़ी पूरी होती हैं. आपके भी तो कई सवाल जो आपने उससे पूछे थे अधूरे रह गए. ना वो मिली, ना फोन नंबर, ना फेसबुक आईडी. होता है जिंदगी में, छोटी छोटी बातें होती रहती हैं बड़े भैया. वो कहा है ना शाहरुख भाई ने, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं. सेन्योरिटा, आज के दिन नॉवेलिस्ट स्टीवन किंग इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे. सितंबर 21st 1947 ही वाज बोर्न. ऑथर हुज बेस्ट सेलिंग हॉरर, साइंस फिक्शन एंड सस्पेंस नॉवल्स इंक्लूड कैरी, द शाइनिंग, मिजरी एंड द डार्क टावर सीरीज. न्यूमरस लिटरेरी ऑनर्स इंक्लूड अ ब्रैम स्टोकर अवार्ड, एन ओ हेनरी अवार्ड एंड अ नेशनल बुक फाउंडेशन medal. He is celebrating his birthday. A very happy birthday to Mr. Stephen King. With that, it's Bill Murray, who's also celebrating his birthday. He's an actor, comedian and actor, who was nominated for an Academy Award for Best Actor for his role in the movie 2003 mein aayi thi, Lost in Translation. Best known for his other roles, that is in Caddyshack, Ghostbusters, Groundhog Day, The Life Aquatic of Steve Zeus and Saint Vincent. A very happy birthday to Mr. Bill Murray. With that is also Luke Wilson celebrating his birthday today, September 21st, 1971. The guy who was seen in Old School, Legally Blonde, Death at a Funeral, today marks his birthday. He's a Dallas, Texas local guy celebrating his 55th birthday. And that is Luke Wilson from Old School, Legally Blonde and Death at a Funeral. Let's take you to the next track because music ke bina ye maza nahi aata na is safar ka yaar. Here we go. For all the Desi ladies out there, this one is for you.

फेस्टिव सीजन आ चुका है भैया. वी आर लुकिंग एट सितंबर ऑलमोस्ट गिविंग अप ऑन इट्स लाइफ बिकॉज 9-10 दिन बचे हैं जी सितंबर में. देन वी आर हिटिंग अक्टूबर एंड दैट कॉल्स फॉर दशहरा, देन दिवाली एंड देन थैंक्सगिविंग एंड देन क्रिसमस. एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ सॉल्यूशन टू गेट योर गिफ्ट्स डिलीवर्ड, चाहे आप किसी के लिए देसी आउटफिट खरीदना चाहते हैं, मिठाई डिलीवर करवाना चाहते हैं, नमकीन हो, all of your favorite goodies, वो जो आपकी nostalgic items हैं, आप इंडिया से यहाँ मंगाना चाहते हो, यहाँ से कोई चीज़ वर्ल्ड वाइड अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपनी गर्लफ्रेंड्स को शिप करना चाहते हो, चॉइस आपकी, या अपनी बीवी की बहनों को, सालियों को, मतलब लेडीज़ का ख्याल रखना चाहिए ना, तो अगर आप उनको कुछ भेजना चाहते हो, SFL Worldwide will bring that ease for you with door-to-door pickup and delivery. जी हाँ, डोर टू डोर पिकअप एंड डिलीवरी, यानी कि आपके घर से चीज़ें उठाएंगे और आपके कहे हुए घर पे छोड़ के जाएंगे. बस बता देना पापा घर पे ना हो उनके. ओशन शिपिंग के लिए, लार्जर आइटम्स के लिए, पूजा मंदिर, झूलास, फर्नीचर, इसके लिए ओशन शिपिंग भी अवेलेबल है. एनीथिंग दैट हैज़ टू डू विद मूविंग विद इन द US, अक्रॉस द ग्लोब और फ्रॉम इंडिया, SFLWorldwide.com इज दैट प्लेस फॉर यू. SFL यानी कि स्टैंडिंग फॉर शिप फॉर लेस worldwide.com. Give them a call, 1-800-691-2335, 1-800-691-2335, or just log on to the website, SFLWorldwide.com. SFL Worldwide, bringing festivities closer to home.

Beautiful track, lovely track, Arijit Singh ki awaaz, and this music coming together with Irshad Kamil Sahab just puts some magic in the air, and then you listen to it, it just goes through your soul. Lovely singing, Arijit Sahab, thank you very much for that track. और एक पूछना मुझे ये था कि क्या आप लोगों को पता है कि मंचूरियन नाम जो आप सुनते हो, मंचूरियन कैसे रखा गया? देखो बात ऐसी थी कि एक ना एन थी, एन लेडी, एन, ठीक है, एन आई इंडिया, गोरी थी, इंडिया आई, और यहाँ पे एक हमारे शेफ भाई जो ठेले पे काम करते थे, मंचूरियन की स्पेशलिटी थी, वो बनाया करते थे, उसका नाम नहीं रखा था उस टाइम. उस टाइम बोला जाता था उसको गोला सब्जी. क्या बोला जाता था? गोला सब्जी. तो भाई वो एन आई, एन को उस भाई का जो सब्जी बनाता था गोला सब्जी बहुत पसंद आई, और धीरे धीरे धीरे एन को प्यार हो गया, और एन ने अंकल जी का दिल चुरा लिया, और दिल चुरा के एन चली गई वापस इंग्लैंड, भैया जी वहीं रह गए. बस उस दिन से भैया जी ने नाम रख दिया मंचूरी एन, मतलब मन चुरा के चली गई एन, तब से मंचूरियन नाम दुनिया में आया. नाउ यू नो. अब कोई पूछे मंचूरियन तो कहना पहले गेंद वाली सब्जी हुआ करती थी. मंचूरियन तो तब बनाया जब एन मंचूरा के चली गई वापस. मंचूरियन.

0: Frisco. Get ready to celebrate silver like never before. Chandrika Silver by Shri Krishna Jewelers celebrates its grand launch. Discover exquisite handcrafted silver jewelry and artifacts with exciting inaugural offers and raffle prizes. Visit 7777 Warren Parkway, Suite 280 Frisco. Chandrika Silver, the tradition shines in silver.
1: Immigration is a serious concern for our community. And when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, firm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
2: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
3: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
4: आर यू ऑन F1 वीजा एंड लुकिंग फॉर मॉर्गेज ऑप्शंस? या आप H1B पे हैं एंड लुकिंग ऑप्शंस विद 5% और 10% और इवन 3% डाउन? सो कॉल कीजिए कामना को एट 214-845-4189, क्योंकि आपका भरोसा ही मेरी पहचान है. NMLS 926641.
5: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar Ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar Ji, 945-527-0897, or visit astrologerishwar.com.
6: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना.
7: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं. 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर. लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे. लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days week, 8 a.m. to 8 p.m. walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
8: Aji sunte ho, soch rahi thi bete ki shaadi India mein kare.
9: India mein? To yahan jo friends aur relatives hain, wo kaise attend karenge?
8: Par yahan sare arrangements manage karna bhi to kitna mushkil hoga.
9: Hello, tum Dallas mein ho. Yahan koi bhi event karna super easy hai, especially jab Vanessa Events ka saath ho.
8: Sach mein? Sab sambhalenge?
9: Are sab kuch, wedding ho, housewarming, graduation, you name it, they deliver. Venue, photography, hospitality, sab kuch ek hi jagah. Signature events ka decor aur khana by the renowned Basera Grand only.
7: Call Hari Basera on 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
10: When the unexpected becomes inevitable, the real story begins.
11: Is van ki kali shakti, aur agar koi raat ko van mein pravesh karta hai, to uski laash bhi nahi milti.
12: Get ready for a brand new action-packed experience, full of emotion and suspense.
13: Ek taraf hai Vandevi aur ek taraf hai Vikas.
12: The One, Force of the Forest.
14: A Hindi mythological folk thriller, directed by Arunab Kumar and Deepak Kumar Mishra. Sizzling the big screen for the first time together, Siddharth Malhotra and Tamanna Bhatia.
12: On 25th September, in cinemas near you.

बंदा जितनी मर्जी अपनी तरफ से अटेंटिवनेस देना कोशिश करे हर सब्जेक्ट को देने की, ध्यान से काम करे, देख के चीजें करे, गड़बड़ हो ही जाती है। अब बंदा अपने हिसाब से बाजार में सब्जी लेने जाता है, देख के लाता है, कहीं में कीड़ा लगा हो तो उसका क्या कसूर है। ऐसे बेचारा एक बंदा जा रहा था घर से बाहर, भाभी ने पूछा कहाँ जा रहे हो, कहता सब्जी वगैरह टमाटर वगैरह लेने जा रहा हूँ, कहती देख के लाना, कहता तुम्हें भी तो देख के ही लाया था।

मुझे भी मेरे रेडियो शो पे मेरे मैनेजमेंट ने देख के लाए हैं, पर समझ रहे हो ना, कई जगह देखने के बाद भी आपको भी चक्कर लो भाभी, आपको भी देख के लाए थे ना ये घर, और आप भी इनको देख के लाए थे ना। बंदा ये बिंदास है, रस पीने की प्यास है, बंदा जितना मर्जी देख ले अंदर का कीड़ा थोड़ी दिखता होता है सब्जी का। दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय आवर वेरी ओन टेक्सास रिहैब। टेक्सास स्टार रिहैब इज द नेम ऑफ द प्लेस। दे आर लोकेटेड इन टू लोकेशंस, इरविंग एंड इन फ्रिस्को, एंड दे आर द प्लेस दैट गेट्स यू पेन फ्री। इफ यू आर गोइंग थ्रू शियाटिका पेन, आपको लगता है कि आपका लोअर बैक इज गिविंग यू ट्रबल, योर नीज आर गिविंग अप ऑन यू, देन ट्रस्ट मी, इट इज नॉट जस्ट पेन किलर मेडिकेशन, खाली दर्द को दबा लिया, उससे कुछ नहीं होगा बड़े भैया। यू हैव टू गेट टू द कोर ऑफ योर प्रॉब्लम, एंड समटाइम्स एक्सरसाइज इज द रियल आंसर। एंड इफ यू गेट समबडी हु कैन टेल यू विच एक्सरसाइज इज टू डू, वॉट न्यूट्रिएंट्स आर लैकिंग इन योर बॉडी दैट इज कॉजिंग दैट फ्लेयर, these are things to know. And Rushi, who is a physiotherapist himself, has this practice which is called Texas Star Rehab. He's also the physiotherapist for Mumbai Indians, New York, all the cricketers that play that league, he cures them. He's also worked on Sachin Tendulkar, Rawalpindi Express, Shoaib Akhtar Sahab, and next could be you. The best part is he accepts all insurances. If you're looking to get a replacement of any of your joints done, then post-surgery rehab jo aapka hai, I would recommend you choose a Texas Star Primary, Texas Star Rehab to get those done for you, because they are excellent at what they do. I've personally used them for many things, including my after surgery rehab for my hip replacement, and they got me walking in no time. So make sure to get them a call, check them online. The website is TexasStarRehab.com. Today marks the birthday of this beauty queen that we all loved watching and listening to her songs and watching her acting. She is from the Kapoor Khandan. Let me play a track and we'll come back to her.

Once again, wishing Bebo a very happy birthday from the team here at Fun Asia and from Banda Binda. Se gaane ka aur waqt hai ji. Uske baad, the last segment of my show is still due, but Hoko restaurant aapne abhi tak try nahi kiya hai, to aap kaise karoge wo Sidhu saab wali baat hai na. Agar nahi try kiya Hoko, then how will you tally Thoko? Isliye aapko jaake Hoko pe try karna padega ji inka khana. Then you'll know ke what they are all about. They are somebody who's been here in Dallas for a short time, par isse pehle बहुत सारा शोर बहुत सारा हल्ला गुल्ला जो है इनका रहा है जी इंडिया में एंड दे आर ब्रिंगिंग यू दैट फूड राइट हियर इन फ्रिस्को नाउ दे आर ओपन इन फ्रिस्को एंड दे आर इंडियाज मोस्ट लव्ड फूड ब्रांड चाहे चना पूरी हो सैंडविचेस हो करीज हो या लेजेंडरी कोल्ड खोखो स्टूडेंट्स ऑलवेज गेट अ 20% ऑफ विद अ वैलिड आईडी तो अगर आपके पास स्टूडेंट आईडी है आप जरूर उस स्टूडेंट आईडी को दिखा के अपना 20% ऑफ लीजिए एंड इफ यू आर वर्किंग इन द नेबरहुड इफ यू आर एन एम्प्लॉय and you have your employee ID with you, you'll also get 20% off lunch packs, which is Monday to Friday during the office hours. Visit them on Preston Road in Frisco. That is Hoko for you. Honey Singh with a new Gana, released about 2 days ago, crossing 20 million views. Bam, bam, bam.

0: Yo, yo, Honey Singh there, featuring Priyanshi, dissing the It's Your Boy, Badshah, somewhere there because of the tequila brand. But that's the fight they've carried on for a long time. Nonetheless, banger of a track, Yo, Yo, Honey Singh, taking a short commercial break. Be right back.
1: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
2: Call 857-891-8942 today.
3: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
4: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
5: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
6: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
5: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
7: सुनो सुनो सुनो सारे मैकन्नी वाले, सुनो, हाईवे 380 पर खुल गया है पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अब एनुअल फिजिकल के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, सेम डे अपॉइंटमेंट के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं और पूरे परिवार के भरोसेमंद डॉक्टर्स की तलाश भी खत्म। सुनो सुनो सुनो, स्वास्थ्य का नया ठिकाना पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, अब मैकन्नी में हाईवे 380 पर।
8: एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव केयर, सेम डे अपॉइंटमेंट्स, क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट और केयरिंग फिजिशियंस, सब एक ही जगह। कॉल टुडे और टेक्स्ट 214-666-6259।
9: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
10: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
11: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
12: अगर किसी चीज को दिल से चाहो
13: तो पहले चेक कर लो उस पे डील है या नहीं।

0: Matro Law Offices PC. Right advice, right defense. Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
1: अगर किसी चीज को दिल से चाहो
2: तो पहले चेक कर लो उस पे डील है या नहीं.
3: डील कहाँ?
2: सिंपल, पास्या पे. इंट्रोड्यूसिंग पास्या. डिस्कवर एक्साइटिंग डील्स एंड ऑफर्स एट रेस्टोरेंट्स नियर यू राइट नाउ. ओपन पास्या, सी व्हाट्स अराउंड यू, फाइंड अ डील एंड ग्रैब इट बिफोर इट्स गॉन.
0: डाउनलोड पास्या, दैट्स PASYA टुडे, बिकॉज़ डील्स दूर नहीं, पास है.
4: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान. myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीज, नो सरप्राइजेस. और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स. 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा. विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338. 4697343338. myfamilyhomeloan.com इज पावर्ड बाय लोन फैक्ट्री. NMLS 2025289. लाइसेंस्ड मॉर्गेज ब्रोकर इन टेक्सस. ऑल लोन सब्जेक्ट टू क्रेडिट अप्रूवल. इक्वल हाउसिंग लेंडर.
0: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
5: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
0: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
6: तुमसे मिलके दिल का है.
5: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
0: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क.

coming to town this September 26th, yani ki this very weekend. And if you haven't gotten your tickets yet, then what are you waiting for? Tickets are available at ticketmaster.com. Ek aisa event jo aapke matlab dil ke bahut kareeb rehne wala hai, because trust me, this fact we all know ki hum sab ne inke bahut sare gaane khud milke bahut sune hain, har film ke sath sath gaya hai. Every song has an emotion for us, chahe wo joy ho, chahe wo yaad ho, chahe wo ek childhood लव हो जिसको आज आपने याद किया हो इनके किसी गाने के साथ. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग के लेट्स रीलिव दोज मेमोरीज मैन, लेट्स कम टुगेदर एंड मेक दिस अ सक्सेसफुल शो विच इट ऑलरेडी इज. पहले तो ये बता दूं ये सोल्ड आउट शो होने वाला है. लास्ट मिनट टिकट्स के लिए वेट मत कीजिएगा. गेट योर टिकट्स राइट अवे एट ticketmaster.com और कॉल 1-855-360-SHOWS. दैट्स 1-855-360-SHOWS. दिस इज एट सितंबर 26 सैटरडे. नो एक्सक्यूजेस क्योंकि संडे छुट्टी है जी. एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन में है. 8:30 p.m. the concert starts, and this is one show that you definitely do not want to miss. I'm going to play one more track from Sonu Saab, taki aapki kuch zyada yaadein jo hain wo taaza ho jaye, and you are able to come out to this lovely show which is all set for you on this very Saturday. Credit Union of Texas, and this is Sonu Nigam live in concert for you. Let's all come together and listen to this lovely, lovely artist perform live for us as we enjoy those melodies. Sing along and have a great time with our friends and family.

नूर जहां जी का जो करियर है जी शुरू हुआ था एट द एज ऑफ 5 शी स्टार्टेड सिंगिंग देन एंड शोड अ कीन इंटरेस्ट इन रेंज ऑफ स्टाइल्स इंक्लूडिंग फोक गाती थी पॉपुलर थिएटर गाती थी और उनका पोटेंशियल देख के पेरेंट्स ने उनको ट्रेनिंग दी उस्ताद गुलाम मोहम्मद साहब के यहाँ एंड बस उसके बाद धीरे धीरे धीरे धीरे 12 घंटे का रियाज रोज करते करते शी बिकेम हु शी वॉज एंड आई गिव हर कुडोज आई सल्यूट दिस वंडरफुल वॉइस नूर जहां And I hope she has a very happy heavenly birthday. With that, it is time for me to say bye-bye, adios, good night. But with a promise, ki agar zindagi rahi, Super Role ne diya ji ek aur mauka at life, I'll be here tomorrow, entertaining you from 5 to 7. Apna khayal rakhiyega, duaon mein mujhe yaad rakhiyega, I'll do the same for you. Aur zindagi mein ek baat hamesha yaad rakhna, ke aapki jitni bhi priorities hain, aapki wife, bache, your parents, your job, your passions, Everything revolves around your well-being. Agar aap khud achhe nahi honge, khud khush nahi honge, then nothing else is going to matter to you. And neither they are going to shine for you. Jab aap khud hi sade rahenge, to aapas, you know, ek, aapne dekha hai na, ke ek sadi hui sabzi ya phal, पूरे बगीचे को या पूरे फ्रिज को ख़राब कर सकती है तो वो सड़ी हुई सब्जी ना बने पहले अपने आप पे फोकस करें मेक श्योर दैट यू प्रोग्राम योरसेल्फ टू बी हैप्पी यू डू थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी यू डू थिंग्स दैट मेक यू फील गुड एट हार्ट बी दैट टेकिंग टाइम आउट फ्रॉम वर्क बी दैट टेकिंग अ हॉलीडे बी दैट टॉकिंग टू अ फ्रेंड दैट यू थॉट ऑफ डूइंग एंड बी दैट हैंगिंग आउट विद सम पीपल दैट यू नीड टू यू नो व्हाट यू नीड टू बी बेटर एंड डोंट लेट एनीबॉडी टेल यू अदरवाइज एंड ऑल्सो जब भी आप अपने आप को नंबर वन प्रायोरिटी बनाएंगे एवरीथिंग एल्स इन योर लाइफ योर जॉब योर वाइफ योर किड्स दिल ऑल बी राइट देयर इन द प्लेस यू वांट देम टू बी विद दैट इट इज गुड नाइट आदियोस मेरे बाद इप्पी द हिप्पी एंटरटेनिंग यू ऑल द वे टिल 10 o'clock दिस इवनिंग गुड नाइट

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Aji sunte ho?
3: Aji nahi, AG sunte.
4: The OG of tax planning, AG FinTax. Sunenge aapke financial concerns, denge smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Fun Asia Radio.
5: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
6: साइन मिलना मुश्किल है लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स, और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो, विजिट signaturecuisine.net। सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
7: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 years or older to game.
8: It's the time to clock out. It's the time to catch up.
9: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame, जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू, सिजलिंग फ्लेवर्स और चटपटे एपेटाइजर्स मेक एन ऑर्डिनरी वीकडे फील लाइक अ डिलीशियस सेलिब्रेशन। एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 5 to 8 PM, ऑर्डर एनी टू एंट्रीज एंड गेट वन एपेटाइजर एब्सोल्युटली फ्री। ब्रिंग योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योर एपेटाइट। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
10: आई एम सो स्ट्रेस्ड।